0: ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ନିଜ ଭିତରର ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାହସର ସହ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ। ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 6 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲି କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ तस्करी, अवैध वित्तीय लेन देन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बंगाल की खाड़ी, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद कल अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल है। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए हैं, जिनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला ये मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यपालों की नियुक्ति की। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर तमिलनाडु और ओपी माथुर केरलम के राज्यपाल होंगे। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास हुए विस्फोट में लश्करे तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 111 करोड़ से अधिक हुई। और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2026 आज से ओडेंस में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम उड़ीसा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक के राज्यपाल होंगे। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ, तस्करी, अवैध वित्तीय लेनदेन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी भाग लेने वाले गृह मंत्रियों और सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी से लगे देशों और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया।
2: 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है। हमें विश्वास है वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 trillion की हो जाएगी।
0: निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में 13 जिला निर्वाचन अधिकारी, 70 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 1313 बूथ स्तर के अधिकारी, बीएलओ पर्यवेक्षक और 14,900 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी इस कार्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सूचित किया है कि 18 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद कल अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहे बेदाग जालिम लोशन
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.tgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित चार आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान लश्करे शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसिम के रूप में हुई है। ये सभी पाकिस्तानी अवैध कब्जे वाले पुंछ जिले के हाजिरा तहसील के मंडला मडारपुर के निवासी थे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत सिंचाई अवसंरचना में सुधार की दिशा में अनुकरणीय प्रदर्शन करने के लिए देश के 100 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये उपलब्धि सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने, कृषि गतिविधियों के लिए जल उपलब्धता में सुधार करने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की दिशा में जिले के प्रयासों को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो आधुनिक भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रही है।
4: राजगीर की पहाड़ियों के बीच नालंदा की कहानी इतिहास से निकलकर वर्तमान में आती है। साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस परिसर के उद्घाटन में 17 देशों के मिशन प्रमुख शामिल हुए। नालंदा की पहचान सिर्फ उसकी प्राचीनता नहीं बल्कि ज्ञान को दुनिया के साथ बांटने की परंपरा रही है। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने इसी विरासत को याद किया।
5: नालंदा के धौंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था, अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं।
4: नालंदा की ये नई यात्रा भी सीमाओं से परे है। आज यहाँ 20 से अधिक देशों के विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। अलग अलग देशों से आए ये विद्यार्थी उस विचार को आगे बढ़ाते हैं जिसे भारत वसुदैव कुटुम्बकम के रूप में देखता है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी बताते हैं कि हम विकास भी और विरासत भी की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं।
6: ये जब हम नालंदा विश्वविद्यालय में अलग अलग तरह की कोर्सेज शुरू करते हैं, अलग अलग तरह के चिंताएं जताते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो नई पीढ़ी है उसके माध्यम से उसी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का काम हम करते हैं।
4: पुरानी नालंदा की विरासत आज प्रधानमंत्री के प्रयासों से विकास और आधुनिक शिक्षा की नई ताकत बन रही है, जहां अतीत की सीख भारत के भविष्य को दिशा दे रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निदेशश्री की रिपोर्ट।
3: भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष जून के अंत तक बढ़कर 111 करोड़ 41 लाख से अधिक हो गई है। मार्च 2026 के अंत तक ये लगभग 109 करोड़ 28 लाख थी। इस वृद्धि दर में तिमाही आधार पर 96% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
7: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपनी भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट में बताया कि कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में से 4 करोड़ 77 लाख से अधिक वायर्ड इंटरनेट उपभोक्ता और लगभग 106 करोड़ 64 लाख वायरलेस इंटरनेट ग्राहक हैं। इंटरनेट उपभोक्ता आधार में ब्रॉडबैंड और नैरोबैंड दोनों प्रकार के ग्राहक शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार जून 2026 के अंत तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 2.03% की वृद्धि हुई, जबकि नैरोबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 0.89% की कमी आई। रिपोर्ट के अनुसार भारत के टेलीफोन ग्राहकों की संख्या मार्च 2026 के अंत में लगभग 133 करोड़ से बढ़कर जून 2026 के अंत में 134 करोड़ हो गई, जो तिमाही आधार पर 1.31%

0: प्रतिशत की वृद्धि है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देवी वैष्णवी की दैवीय शक्ति असीम वीरता का प्रतीक है और वे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देवी पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं और प्रसन्न होने पर मोक्ष का प्रदान करती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला ये मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। मेला इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले 2022 के राज्य कानून को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश विभू भश्रू और न्यायाधीश के एस हेमालेखा की खंडपीठ ने इस कानून को असंवैधानिक बताया। पीठ ने कहा कि आरक्षण में ये बढ़ोतरी सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले में तय की गई 50% की कानूनी सीमा का उल्लंघन करती है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओरेंस में शुरू हो रहा है। दो ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक चैंपियन और विश्व नंबर एक दक्षिण कोरिया की आन से यंग से खेलेंगी। तन्वी शर्मा का मुकाबला जापान की नादुसुकी निदेरा से होगा। अश्मिता चालिहा, देविका सिहाग और उन्नति हुडा अपने प्री क्वार्टर फाइनल मैच आज खेलेंगी। वहीं पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और पूर्व विश्व नंबर एक किदांबी श्रीकांत आज राउंड ऑफ 32 में अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और राजस्थान में भी कल तक ऐसे ही मौसम की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: पीसीपी एनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद फरहत। दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर प्रदर्शनों पर रोक लगाने का समाचार सभी अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं। गृह मंत्रालय की समिति की सिफारिश पर दिल्ली पुलिस ने लगाई रोक। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, कई आंदोलनों के गवाह जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं। 3 नए स्थान तय, रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान, सीबीडी मैदान। समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों को परास्त करेगा मंगरोल। नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ तीसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत। हिंदुस्तान ने उपलब्धि शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने सऊदी अरब में मिसाइल ड्रोन हमलों की वजह से रियाद एयरपोर्ट के बंद होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, सऊदी से उड़ानें बंद, केरलम के 10 लाख लोगों का त्योहारी प्लान अटका। 51% लोग शॉपिंग करने में ले रहे एआई की मदद, सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर कर रहे शॉपिंग। नवभारत टाइम्स की खबर है, पोर्टलैंड के पास ओरेगन के जंगलों में गुस्सा निकालने का अनूठा शिविर, जंगल में जुटता है महिलाओं का समूह, भड़ास निकालने के साथ खुद को करती हैं शांत, 7 दिन का पैकेज 4 लाख रुपए, अमर उजाला की सुर्खी है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यपालों की नियुक्ति की। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर तमिलनाडु और ओपी माथुर केरलम के राज्यपाल होंगे। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास हुए विस्फोट में लश्करे तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 111 करोड़ से अधिक हुई। और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2026 आज से ओडेंस में शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: सेबी द्वारा इन्वेस्टर जागरूकता प्रारंभ। अधिक सूचना पाई सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट को विजिट करंतु किंबा सेबी सारथी ऐप डाउनलोड करंतु।
1: अच्छा तुम सब रिपोर्ट देखल एचआईवी टेस्ट हेची?
2: नाही डॉक्टर बाबू, सेटा कोन निहाती जरूरी?
3: आज्ञा हाँ, गर्भावस्था रे प्रत्येक महिला निजर एचआईवी परीक्षा करेने अजना आतंक ठु दूरे रहंतु।
4: जदि रिपोर्ट पॉजिटिव आसे ताले उपयुक्त चिकित्सा जरिया रे निजे तथा शिशु उभय एड्स भली मारात्मक रोग को प्रतिरोध करंतु।
3: मने रखंतु, ए परीक्षा एवं चिकित्सा निकटस्थ सरकारी डाक्तरखाना रे थिबा आईसीटीसी केंद्र रे मागणा रे उपलब्ध।
5: अधिक जानिबा पई टोल फ्री नंबर 1097 सह जोगाजोग करंतु।
3: ओडिसा राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित रे जारी।
6: ଏଥର ଶୁଣନ୍ତୁ କଥାଚିତ୍ର ବାବୁଲରୁ ଗାଇଛନ୍ତି କୋନାଲ ଗାଞ୍ଜବାଲା, ଗୀତ ସମୀର, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଆଦେଶ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ।

0: आकाशवाणी है विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 26वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा गुजरात से विश्व मंच तक 25 वर्ष की यात्रा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनिजा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2001 में गुजरात की कमान संभाली, तब लक्ष्य यही था कि गुजरात की अर्थव्यवस्था बेहतर हो, गुजरात का नाम भारत के साथ साथ विदेशों में भी पहुंचाया जाए। गुजरात से लेके विश्व मंच तक का सफर, उभरता भारत, विश्व मंच पे डटा भारत, आज इस

0: विषय पे चर्चा करने के लिए हम जुड़ रहे हैं दो बहुत ही खास विशेषज्ञों के साथ। मैं स्वागत करना चाहूंगी आकाशवाणी समाचार में अम्बेसडर अशोक सज्जनहार का और श्री अतुल अनेजा का। दोनों ही हमारे पैनलिस्ट स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पे अपनी बात बहुत ही बखूबी से रखते हैं। आप दोनों विशेषज्ञों का स्वागत है आकाशवाणी में। अम्बेसडर सज्जनहार, सबसे पहले मैं आपसे ही बात करना चाहूंगी। वाइब्रेंट गुजरात समिट की अगर हम बात करें तो साल 2003 में शुरू हुआ ये समिट, एक इन्वेस्टर समिट के रूप में शुरू किया गया था। बीते सालों में वाइब्रेंट गुजरात समिट ग्लोबली एक्लेम्ड प्लेटफॉर्म बन गया है जो सरकारों को, बिजनेसेस को, इनोवेटर्स, इन्वेस्टर्स और थॉट लीडर्स को एक प्लेटफॉर्म, एक मंच देता है, वहां पे सबको साथ लेकर आता है। अब इतने साल बीत गए और वाइब्रेंट गुजरात समिट सेमीकंडक्टर्स, एआई, एरोस्पेस जैसी नई तकनीकों पर भी बात करता है। अगले साल होने वाले वाइब्रेंट गुजरात समिट को जो उसका फोकस एरिया है वो डिसेंट्रलाइज्ड रीजनल ग्रोथ, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे बड़े बड़े विषयों पे चर्चा करेगा। और ब्रॉडर रूप से देखा जाए तो वो जो भारत का फोकस है विकसित भारत की ओर, उसकी तरफ भी चर्चा करेगा। मैं आपसे समझना चाहूंगी एम्बेसडर सज्जनहार कि आपको लगता है कि वाइब्रेंट गुजरात समिट ने देश को एक दिशा दिखाई कि भारत के ग्लोबल स्टेज पे राइज का एक ये शुरुआती तार जोड़ा है? आप वाइब्रेंट गुजरात समिट को वैसे देखते हैं?
1: जी, बहुत धन्यवाद दीक्षा मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, वाइब्रेंट गुजरात समिट का जैसे आपने अभी जिक्र किया, 2003 में इसकी शुरुआत हुई और हमें देखना होगा जो इसकी शुरुआत उस समय क्यों हुई, क्योंकि उससे पहले हमने देखा है जो 2002 में कम्युनल रायट्स हुए थे वहां पर गुजरात में हालात इतने अच्छे नहीं थे। उसके पहले हमने देखा है 2001 में भुज में बहुत ही भयानक वहां पर भूकंप आया था, उससे बहुत ही तहस नहस वहां पर हो गया था। गुजरात को एक नया प्रोफाइल देने के लिए नए इन्वेस्टमेंट्स लेकर आएंगे, उसकी शुरुआत की गई 2003 में और तब से नए नए जो कार्यक्रम थे, नए नए जो आइडियाज थे, चाहे वो पेट्रोकेमिकल्स हो या फिर वो ऑटोमोबाइल्स हो या फिर उस प्रकार के जो फॉरवर्ड लुकिंग तरीके बनाए गए हों, वो प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय शुरुआत की। तो 2003 में इसकी शुरुआत हुई और फिर हर दो साल बाद उसको वहां पर आयोजित किया गया। तो अलग अलग तरीके से वहां पर एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी कुछ लेकर आए गए। 2003 के बाद 2005 को फिर से शुरुआत की गई। 2005 से 2007 में हर दो साल बाद इसका हुआ और अब अगर देखा जाए तो 2013 तक प्रधानमंत्री मोदी थे वहां पर, मुख्यमंत्री थे। तो उसके बाद हम देख रहे हैं जो केवल गुजरात में नहीं, अब हम देख रहे हैं जो और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, उन्होंने भी ये सब नए नए वाइब्रेंट अपने यहाँ पर अपने स्टेट्स के लिए इसको आगे बढ़ावा देने का उन्होंने काम किया है। तो इसीलिए, और आपने जैसे अभी कहा जो आगे ले जाते हुए दो साल के बाद फिर से ये वाइब्रेंट गुजरात होगा, तो उसमें ये बिल्कुल तार है विकसित भारत 2047 में आगे चलने का। और इसमें जो नए नए तरीके आए हैं, क्योंकि शुरुआत तो पहले की गई थी इन सभी क्षेत्रों से, जैसे मैंने कहा ऑटोमोबाइल्स, पेट्रोकेमिकल्स वगैरह वगैरह, फिर धुलेरा का स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, दहेज का, वो वाले सब वहां पर किए गए, परंतु अब इसको और बहुत ही विस्तार किया जा रहा है, विस्तृत तरीके से किया जा रहा है। और इसमें हम देख रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या नए तकनीक जो हैं उनको भी साथ में लाया जा रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग को लाया जा रहा है साथ में, जिससे कि आगे चलते हुए जैसे अभी प्रधानमंत्री ने आह्वान दिया है जो हम 2047 तक अपना लक्ष्य पूरा करके रहेंगे, विकसित भारत को हम अचीव करके रहेंगे, वही हमारा लक्ष्य है। मैं समझता हूँ जो वाइब्रेंट गुजरात की जो कड़ी शुरू हुई थी 2003 में, वो अभी तक चलती आ रही है और इसको बिल्कुल आगे ले जाते हुए न केवल गुजरात में परंतु पूरे देश में इसको हम आगे लेकर जा रहे हैं और पूरे देश को विकसित भारत की ओर अग्रसर करने में इसका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है।
0: अम्बेसडर सज्जनार, और आपने काफी विस्तृत रूप से हमें समझाया। अब मैं आगे बढ़ते हुए मिस्टर अनीजा, मैं आपसे बात करना चाहूंगी, अगर हम G20 समिट की बात करें या G20 प्रेसिडेंसी की बात करें, तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी संभाली और 200 से ज्यादा मीटिंग्स, भारत के 60 से ज्यादा

0: शहरों में होस्ट की गई। G20 की अगर हम थीम की बात करें तो G20 की थीम भी भारत की प्रेसिडेंसी में थी, वसुधैव कुटुंबकम। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उससे पहले कि हम इसमें चर्चा करें, हम सबसे पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 लीडर समिट को होस्ट करते हुए क्या कहा।
1: एक G20 रोड मैप बनाना चाहिए। फ्रेंड्स, रेजिलियंस कैन नॉट बिल्ड इन साइलोस। G20 को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी को बढ़ावा देना चाहिए, जो न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को जोड़कर एक मजबूत वैश्विक सुरक्षा बनाए।
0: मिस्टर अनीजा, G20 समिट ने भारत की डिसाइसिवनेस को एक गति दी है और ये भी दर्शाया कि हम इंक्लूसिव भी हैं और ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में भी हमें दिखाया गया है, तो इसके ऊपर आपके क्या विचार है?
2: देखिए, G20 की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि भारत अपने आप को एक ब्रिज की तरह अपने आप को प्रोजेक्ट कर सका, जिसमें ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ को जोड़ना था। और ग्लोबल साउथ को जोड़ने की अगर बात करें तो फिर जो है 56 देश जो अफ्रीकन यूनियन के हैं वो सदस्य बने G20 के। तो एक तरह से प्रोग्रेसिव इंक्लूसिव फील या एक इमेजिनेशन प्रदान की गई G20 को। साथ में बात हुई है वसुधैव कुटुंबकम की, जो इसकी मेन थीम थी कि आप अगर जोड़ना चाहते हैं देशों को या लोगों को, डाइवर्स लोगों को, तो उसकी एक बुनियाद सोच है जो है कि एक दुनिया, एक विश्व, एक परिवार है। अगर परिवार है तो आपका उसमें दायित्व बनता है कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको आगे लेके चले। तो एक तरह से एक आइडियोलॉजिकल ब्रेक थ्रू था ये G20 में जो दर्शाया गया, जिससे आप एक वसुधैव कुटुंबकम की बुनियाद पे आप ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ को आप जोड़ सकते थे। अगर हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, उसके पीछे भी वसुधैव कुटुंबकम की जो G20 की थीम थी वो भी अभी आएगी, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो यूक्रेन या रशिया के बीच में हो, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो। तो वे कॉमन थीम जो थी, जो शुरू होती है वाइब्रेंट गुजरात से और एक तरह से कल्मिनेशन पॉइंट या एक तरह से मैच्योर लेवल पे आती है G20 के अंदर।
0: अम्बेसडर सज्जना, G20 समिट में हमने देखा कि अफ्रीकन यूनियन को भी मेंबर बनाया गया और साथ ही साथ जो मैंने पहले भी कहा कि G20 को भारत ने दर्शाया कि हम ग्लोबल साउथ की आवाज को आगे लेकर जा रहे हैं। तो अम्बेसडर सज्जना, आपसे मैं यहाँ ये समझना चाहूंगी कि अफ्रीकन यूनियन को इस फोल्ड में लाने के पीछे प्रधानमंत्री की कौन सी दूरदर्शी सोच रही होगी।
3: देखिए, जब से ये G20 की शुरुआत हुई थी 2009 में, 2010 में, जबकि एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, तो तब से ये था जो अफ्रीका के जो देश हैं उनकी कोई भी वहां पर रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। केवल साउथ अफ्रीका एक देश था जो कि G20 का एक सदस्य था, परंतु तब से बहुत सालों से, हमेशा से अफ्रीकन यूनियन ये हमेशा कहता रहा जो उसको इसका सदस्य बनना चाहिए। हम जानते हैं जो यूरोपियन यूनियन सदस्य है, यूरोपियन यूनियन 27 देश है उसमें, परंतु अफ्रीका के जो हैं वो 54 देश हैं, परंतु उनकी कोई वहां पर रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने, मुझे याद है, तब जब बाली का समिट हो रहा था तो तब उन्होंने कहा था, हम गारंटी देते हैं जो हमारे जब अध्यक्षता होगी तो हम जरूर अफ्रीकन यूनियन को इसमें सदस्यता दिलाएंगे। और आपको याद होगा जो 9 सितंबर 2023 को जब पहले दिन ही ये शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो उस समय पहले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने ये ऐलान किया, जो ये पूरी तरीके से सभी देशों को मान्य है, जो अफ्रीकन यूनियन को भी एक इसका सदस्य बनाया जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जिसे कहा जाए ग्लोबल साउथ, जो भी हैं विकासशील देश हैं, उनके जो भी हित हैं उनको सामने लाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपको याद होगा जो जब भारत ने इसकी अपनी अध्यक्षता संभाली थी 1 दिसंबर 2022 को, और उसके एक महीने के अंदर ही हमने, जिसे कहा जाए तो, एक वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट का ऑर्गेनाइज किया था प्रधानमंत्री मोदी ने 11-12 जनवरी को, जो 125 देशों ने, डेवलपिंग कंट्रीज थे, विकासशील देश थे, उन सब ने इसमें भाग लिया, इसमें शिरकत ली। और उसमें हर लेवल पर, चाहे वो राष्ट्रपति के स्तर पर हो, अलग अलग देशों ने उसमें सम्मिलित हुए या फिर प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति या विदेश मंत्री या अन्य मंत्रियों के लेवल पर उन्होंने इसमें शिरकत की और फिर जो भी उनसे पूछा गया जो उनकी क्या मंशाएं हैं इसमें तो सभी के चाहे वो डेट हो चाहे उनका फूड

0: सिक्योरिटी हो, चाहे एनर्जी सिक्योरिटी हो, ये सब चीजें जो हैं, चाहे वो विमेन लेड डेवलपमेंट हो, विमेन लेड ग्रोथ हो, ये सभी चीजें इसमें जो G20 की बातचीत हुई, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया और जैसे अतुल जी ने भी बिल्कुल ठीक बताया, जो करीब 200 मीटिंग की गए, 60 शहरों में ये मीटिंग की गए, और ये जो सभी थे डेवलपिंग कंट्रीज के, विकासशील देशों के, इनकी जो प्रॉब्लम्स थी इनको सबको लेकर आया गया। तो मैं समझता हूँ जो भारत ने ये बताया है, जो विकासशील देशों की आवाज बनकर भारत उभरा है, हमारा जो इसमें थीम भी था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वो था वसुधैव कुटुंबकम था, परंतु उसको और एक्सपैंड कर दिया गया और इस हिसाब से हमने इसको आगे लेकर जाएगा।
1: मिस्टर अनेजा, G20 समिट को लेके एक मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अगर इस पूरे समिट के अचीवमेंट्स की बात करें तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को भी G20 के साइडलाइंस पे लॉन्च किया गया और GBA यानी कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को काफी इंटरनेशनली पसंद किया गया, सपोर्ट मिला और अब इसके 24 मेंबर्स हो गए हैं। तो मिस्टर अनेजा, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिरकार ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लॉन्च करने के पीछे की सोच क्या थी?
2: दीक्षा, फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी पे और कम से कम जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उसके ऊपर डिपेंडेंस कम से कम हो। ये एक ग्लोबल एक तरह से मिशन है भारत की, खास करके जो देश जिनके पास कच्चा तेल नहीं है, क्रूड ऑयल नहीं है, उनके लिए बहुत जरूरी है कि रिन्यूएबल एनर्जी और बायोफ्यूल्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए। और खास करके हम देख रहे हैं जो ईरान में युद्ध हो रहा है कि ये एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर और ज्यादा फोकस है। तो एनर्जी के ऊपर, क्योंकि बिना ऊर्जा के, बिना क्लाइमेट चेंज को रोकते हुए, रिन्यूएबल्स के बिना हमारी आगे एनर्जी सिक्योरिटी नहीं बनेगी, ये हमारी एक बुनियादी एक सोच है। G20 में जो वासुदेव कुटुंबकम या जो दो स्लोगन उसके आए हैं, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर या वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, आप अगर आप इनको देखेंगे तो इसके पीछे एक बड़ी आइडियोलॉजिकल सोच ये है कि भारत आइडियोलॉजी की बात करता है, अपनी विरासत की बात करता है, अपनी सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ जो है वो सामने आती है। तो मुझे लगता है कि ये जितनी भी एंगेजमेंट रही है G20 के अंदर, उसमें ये एक बड़ी खास बात थी कि भारत एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, और जब मल्टीपोलर वर्ल्ड में आप एक सिविलाइजेशनल स्टेट हो तो आपका एक खास दर्जा रहता है और बाकी देशों को, खास करके ग्लोबल साउथ को जोड़ने में उसमें तो आसानी रहती है। तो मुझे लगता है कि कल्चरल एलिमेंट भी इसके अंदर गया था ये G20 के अंदर। साथ में मैं एक और जोड़ना चाहूंगा बात, अगर हम सिविलाइजेशनल स्टेट की बात करें तो भारत, आपको याद होगा इन्हीं दिनों में ये वर्ल्ड डेमोक्रेसी समिट होती थी, तो प्रधानमंत्री ने ये भी कहा उन समिट्स में एक से ज्यादा कि इंडिया इज अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। वो भी हमारी जो डेमोक्रेसी है ये हमारा एक तरह से सिविलाइजेशनल हेरिटेज है, एक विरासत है हमारी। तो वो आप वेस्टर्न सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी से अलग होके आप डीपर जा रहे हैं और आपकी अपनी सोच एक तरह से एक सिविलाइजेशन सोच और बढ़ रही है। और ये जो हमारी एंगेजमेंट्स, एक्सटर्नल एंगेजमेंट, G20 हो या जनरली फॉरेन पॉलिसी हो, ये एक नई चीजें जो है कि शुरू हम फिर करते हैं वाइब्रेंट गुजरात से और ये इवॉल्व होके अब एक क्लियर कट एक मॉडल बना है जो हमारा एक इंडिजिनस मॉडल है, जो आज की दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, खास करके जो केओस हो रहा है दुनिया के अंदर, जिस तरह से डिवाइसिवनेस आ रही है, उसको जोड़ने के लिए बहुत मदद करेगा।
1: मिस्टर अनेजा, आपने काफी अच्छे से हमें समझाया पूरी जो इसके पीछे की सोच थी उसको। आगे बढ़ते हुए अब मैं आप दोनों ही विशेषज्ञों से बात करना चाहूंगी ब्रिक्स समिट के बारे में, और अम्बेसडर सज्जनार, सबसे पहले मैं आप ही की राय जानना चाहूंगी। ब्रिक्स इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, डेवलपमेंट फाइनेंसिंग और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में अपनी रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने का एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म बन गया है, और हमने देखा है कि भारत हर प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज को बुलंदी से रखता है और ब्रिक्स की अध्यक्षता करते हुए अभी दिल्ली में ही पिछले महीने 12 और 13 सितंबर को लीडर्स समिट दिल्ली में ब्रिक्स का होस्ट किया गया। तो आगे बढ़ने से पहले आइए सुन लेते हैं प्रधानमंत्री के कुछ इम्पोर्टेंट अंश जो उन्होंने ब्रिक्स समिट में लीडर समिट को एड्रेस करते हुए बोला।
3: भारत में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है। इसी सोच के साथ 350 से अधिक बैठकों का आयोजन किया गया, लगभग 30 शहरों में आपकी टीम्स का स्वागत करने का हमें अवसर मिला।

0: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को सफल बनाने में सक्रिय योगदान और समर्थन के लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।
1: अम्बेसडर सज्जनार, ब्रिक्स की एक्सपैंडिंग मेंबरशिप और बदलते ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस के बीच भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करते हुए इस ग्रुपिंग को एक इफेक्टिव प्लेटफॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स जैसे लोकल करेंसी में ट्रेड और ग्लोबल साउथ की डेवलपमेंट जो हमने जिसकी बात भी करी कि प्रायोरिटीज को आगे बढ़ाएं और इस प्रोसेस में भारत को किन कम्पीटिंग नेशनल इंटरेस्ट के बीच बैलेंस बनाना पड़ रहा है?
2: जी देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि मैं इसको ब्रिक्स समिट जो हुआ है 12 और 13 तारीख को सितंबर को और जो इससे पहले G20 हुआ 2023 में, मैं समझता हूँ जो चुनौतियाँ भारत के लिए दोनों समय बहुत ही ज्यादा थी, बहुत ही अधिक थी, क्योंकि उस समय भी एक ऐसी ही चुनौती थी जब एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध में बिल्कुल ही पूरा जो विश्व था वो अलग थलग दो धड़ों में डिवाइड हो गया था, क्योंकि एक तरफ उस समय रूस और चीन एक तरफ खड़े थे और दूसरी तरफ जो पश्चिमी देश हैं वो सब खड़े थे और ये भारत के ऊपर सब कुछ मयसर हुआ जो हम दोनों को साथ में लेकर आए और एक प्रकार का जो यूनानिमिटी अग्रीमेंट वहां पर लेकर आ पाए। ऐसा ही यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इसमें जो एक्सपेंशन हुआ ब्रिक्स का, आपको मालूम है जो शुरुआत हुई थी 2001 में, पहली मुलाकात हुई 2006 में जब विदेश मंत्री मिले यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के साइडलाइंस पर, 2009 में सबसे पहली बार रूस के यहाँ पर शिखर सम्मेलन हुआ, परंतु अब पिछले कुछ सालों में क्योंकि हालात पूरे विश्व में इतने ज्यादा उथल पुथल हो गए हैं, जो बहुत देश चाहते हैं जो वो ब्रिक्स के सदस्य बने और हमने देखा है जो 2023 में जोहानसबर्ग के समिट में, ब्रिक्स के समिट में यहाँ पर पहले 5 सदस्य थे, अब उससे 11 सदस्य हो गए हैं और इसमें ये जो ब्रिक्स के देश हैं इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि अब और भी बहुत देश हैं वो अपना हेजिंग चाहते हैं, जितना ज्यादा सभी मिलकर ये देश मिलकर साथ में काम कर सके वैसा ही वो होना चाहिए। तो भारत ने ये ब्रिक्स का जो समिट है इसको बिल्कुल वैसे ही तरीके से जैसे कि G20 में हमने किया था वैसा ही हमने अग्रीमेंट यहाँ पर लेकर आए हैं और मैं समझता हूँ जो आगे चलते हुए ये भारत ब्रिक्स को भी आगे लेकर जाएगा और सभी देशों को साथ में मिलाकर इनको आगे ले जाने में सफल हुआ है और आगे ये सफल होगा। एक चीज मैं इसमें ये और कहना चाहूंगा, जो जब G20 की हम बात करते हैं, थोड़ा सा अगर मैं पीछे ले जाऊं तो वहां पर एक ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के अलावा हमने एक इंटरनेशनल मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी उस समय ये शुरुआत की और मैं समझता हूँ जो कनेक्टिविटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक मुद्दा है जो कि सभी देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये वाले जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और सभी देशों को साथ में लाने में बहुत ही इनका अच्छा योगदान रहेगा।
1: अम्बेसडर सज्जनहार की बात को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर अनीजा, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जैसे कि अभी अम्बेसडर सज्जनहार ने जिक्र किया कि हम कनेक्टिविटी पे बहुत ध्यान दे रहे हैं और अगर कनेक्टिविटी और बाकी इसके अलावा अल्टरनेट रूट की भी तैयारी की जा रही है और इस बात का मैं जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपने वेस्ट एशिया में काफी समय तक अपना करियर बनाया है, वहां पे आप रहे हैं, आपने रिपोर्टिंग करी है, तो अगर अभी जो हम हालात देख रहे हैं वेस्ट एशिया के उसमें हम ये देख पा रहे हैं कि वहां से क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जब बंद हुआ तो काफी देशों को दिक्कतें आई, ना कि सिर्फ भारत को, तो अगर इस पूरे प्रकरण में भारत एक अल्टरनेट रूट और एक स्टेबल रूट बना के दुनिया के सामने रख पाता है तो उससे भारत की जो इमेज है वो वर्ल्ड लेवल पे किस तरीके से ग्रो करेगी। और दूसरा प्रश्न आपसे अम्बेसडर सज्जनहार और मिस्टर अनीजा दोनों से आपसे मैं ये करना चाहूंगी बहुत ही संक्षेप में कि जो प्रधानमंत्री मोदी की अपनी पर्सनल केमिस्ट्री है वर्ल्ड लीडर्स के साथ वो कैसे ट्रांसलेट करती है जब हम किसी भी मल्टीलैटरल फोरम में देखें तो वहां पे निर्णय निकल के आते हैं या फिर किसी बायलैटरल मीटिंग में भी देखें तो काफी मुसीबतों का भी हल निकल कर आता है। इन दोनों ही प्रश्नों पे सबसे पहले मिस्टर अनीजा आपका जवाब चाहूंगे और फिर अम्बेसडर सज्जनहार का।
3: दीक्षा, आपका सवाल बहुत ही दिलचस्प है। आप देखेंगे कि अभी इस वक्त जो है हम दो मेन मैरिटाइम चैनल्स हैं, एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और दूसरा बाबल मंदाब जो रेड सी और इंडियन ओशन को जोड़ता है।

0: दोनों में ही एक तरह से जो ट्रेड होती है या वहां से जो शिप्स निकलते हैं, सिवियर बाधा पड़ी हुई है इस वक्त। तो मुझे लगता है कि ये रूट्स का जो मैरिटाइम रूट्स के ऊपर जो डिपेंडेंस है, वो हमें देखना है कि ऑल्टरनेट लैंड रूट्स कौन से आ सकते हैं, यानी कि कॉन्टिनेंटल रूट्स की अब ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी, क्योंकि आज हॉर्मुज है, बाबर मंदा है, और कल अगर स्ट्रेट ऑफ मलाका में कुछ हो जाता है चीन और यूएस के बीच में, ताइवान के ऊपर जिस तरह से टकरार है, तो फिर हम कहां जाएंगे? तो इसलिए भारत की ऑल्टरनेटिव रूट्स, जैसे अम्बेसडर सज्जन हर ने कहा कि एक तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वो बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा हमें देखना है कि INSTC का फाइनली अगर हम देखें, उसका रूट ईस्टवर्ड्स जाता है रशियन फार ईस्ट की तरफ, व्लैडिवोस्टोक की तरफ, वहां से नॉर्थ आर्कटिक रूट निकल रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहां से चैनल्स निकल रहे हैं। हमें वो ज्योग्राफी भी देखने की जरूरत है, क्योंकि वो फिर ना मलाका को क्रॉस करते हैं, ना ये हॉर्मुज या बाबल मंदा बलिया की प्रॉब्लम आती है, और तीसरा जो है व्लैडिवोस्टोक में चेन्नई। तो मुझे लगता है कि ये लैंड रूट्स और ये जो ओशियनिक बॉडीज हैं जहां पर विवाद कम है, वहां पर हमें ज्यादा जरूरत है इस वक्त, क्योंकि जो दुनिया के हालात है, ये इन ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम जल्द से जल्द इनको एक्टिवेट करें। ये आप इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जब मैं दिल्ली में था, ये बात होगी शायद 2000 या 2001 की, तब से बात चल रही है, लेकिन अब एक अर्जेंसी आ गई है कि इन रूट्स को जो है पूरी तरह से कायम किया जाए, खास करके अभी जो रिसेंट हमारी प्रॉब्लम्स आ रही है हॉर्मुज को लेके और बाबर मंदाब को लेके, मुझे लगता है कि अभी ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। दूसरी बात आपकी दीक्षा जो थी वो है पर्सनल केमिस्ट्री की, प्रधानमंत्री की। ये एक बड़ा ही यूनिक एलिमेंट आया है कि पर्सनल केमिस्ट्री प्रधानमंत्री की जो कनेक्ट है, चाहे वो लोगों के साथ हो चाहे बाकी वर्ल्ड लीडर्स के साथ, बहुत ही स्पॉन्टेनियस एक तरह से आता है, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि स्पेशली क्योंकि दुनिया में कई लीडर ड्रिवन डिसीजन होते हैं, तो उसमें बहुत एक तरह से भारत के लिए बहुत फायदा है, क्योंकि आपके जो टॉप लीडर्स के साथ जो है, सिर्फ आपकी इंटरेस्ट से नहीं, बट पर्सनल इक्वेशंस जो है वो बहुत अच्छी हैं। उसका मुझे लगता है कि हमें बहुत ही ज्यादा लाभ मिल रहा है। हम देख रहे थे इंडोनेशिया में भी विजिट हुआ, जिस तरह से वहां के राष्ट्रपति प्रबोवो प्रधानमंत्री के साथ पूरे विजिट में साथ थे, रिसीव करने के साथ साथ जो भी पूरा विजिट था, जैसे हमने देखा कि इंडोनेशिया के अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री की गर्मजोशी से वेलकम किया गया प्रेसिडेंट प्रबोवो ने, तो मुझे लगता है कि वो पर्सनल एलिमेंट एक बीच में आके एक स्पेशल रिलेशनशिप बनाता है, तो उसकी एक बहुत बड़ी एक भूमिका रहती है। और हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कि ये एक एलिमेंट जो है वो हमारी डिप्लोमेसी का एक अहम हिस्सा बन चुका है।
1: अम्बेसडर सज्जनहार, जैसे कि मिस्टर अनेजा ने कहा, मैं आपसे भी चाहूंगी कि आप अपने विचार इस चीज पे हमारे साथ साझा करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पर्सनल केमिस्ट्री है वो वर्ल्ड लीडर्स के साथ किस तरीके से ट्रांसलेट होती है और उसका कितना फायदा मिलता है भारत को डिप्लोमेटिकली।
2: जी देखिए, ये बहुत ही मेरे विचार से महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि लोग ये कहते हैं जो बेसिकली दो देशों के बीच में अगर जो रिश्ते होते हैं, संबंध होते हैं, तो वो उनके इंटरेस्ट पर होते हैं, वो उनके हितों पर होते हैं, वो उनके पर्सनल रेपो पर्सनल रिलेशन पर नहीं होते हैं। परंतु मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमने देखा है जो प्रधानमंत्री मोदी का इतना सहज तरीके से सभी जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनसे मिलना होता है, और चाहे जो पूरे विश्व के जो नेता हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं दोनों देशों के बीच में, अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो उसको अपने पर्सनल रेपो से, पर्सनल रिलेशन से एकदम वो ठीक कर देते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ जो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है प्रधानमंत्री मोदी का, जो वो सभी विश्व नेताओं के साथ अपने संबंधों को बनाकर रखते हैं। एक जो दूसरा आपने प्रश्न किया था, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं बताऊं, जो कनेक्टिविटी के बारे में हम जो बात कर रहे थे, देखिए हॉर्मुज में करीब पूरे विश्व का 20% जो तेल है वो वहां से जाता है, और जब से ये युद्ध शुरू हुआ है 28 फरवरी को, तब से हम देख रहे हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल निकलना बिल्कुल ही बंद हो गया है, और ये इसकी सबसे ज्यादा मुश्किल जो है उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो एक तो डेवलपिंग कंट्रीज को, जो विकासशील देश हैं उनको, और उनमें भी भारत जैसे देश को सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि भारत करीब अपना 85% जो तेल है वो बाहर से आयात करता है, और उसके अलावा अगर हम देखें जो गैस है, LPG है, LNG है, करीब जो भी हम जितना भी आयात करते हैं उसमें करीब 90% हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। तो इसलिए यहाँ का जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए बन गया है, और इसको इधर से तेल का आना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, और इसीलिए भारत हमेशा यही कहता है जो

0: बातचीत से इस मसले को हल करना चाहिए। यही बात बाबेल मंडप की है। यहाँ पर से अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 20% तेल जाता है तो बाबेल मंडप का करीब 12-15% तेल जाता है। तो इसीलिए ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स हो गए हैं। और इसीलिए जो कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, अब INSTC की बात हुई, IMEC की बात हुई, और फिर अब ये पोलर रूट की बात है, क्योंकि जो रूस के उत्तर से जो पोलर रूट जाता है, और इसीलिए इसका बहुत ही ज्यादा इसमें योगदान रहेगा, जो हमको और भी जो हर प्रकार के जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि मुझे याद है ये जो INSTC 1997 में जब मैं मॉस्को में हुआ करता था तब की हमने शुरुआत की, परंतु ये इसको आगे हम नहीं ले जा पाए क्योंकि हमेशा ईरान के ऊपर हमेशा सैंक्शंस बने रहे। परंतु अब हमको ये जरूर प्रयास करना है जो उसमें हो, चाबहार को भी हमें डेवलप करना है, और जल्दी से इस क्षेत्र को बिल्कुल सभी मिलकर इसमें शांति लानी चाहिए, जिससे कि हम इसको आगे जो INSTC और चाबहार को और आगे ले जा सकें।
1: मिस्टर अनेजा, मेरे पास अभी दो और पॉइंट्स हैं जिन पे मैं दोनों ही विशेषज्ञों से आपकी राय जानना चाहूंगी। तो मिस्टर अनेजा, आपसे अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, तो इसमें अगर देखा जाए तो इंडिया का इनिशिएटिव इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का फोकस दुनिया के 7 मेजर कैट स्पीशीज और उनके हैबिटेट्स के कंजर्वेशन के लिए है, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव से हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और ये सिर्फ डिप्लोमेसी की बात नहीं है, ये बायोडायवर्सिटी की बात है, ये वाइल्ड लाइफ की बात है। तो अगर इसके बारे में आप हमसे चर्चा करें तो इसके आउटकम्स आपके हिसाब से कितने इम्पैक्टफुल रहे हैं और आगे आने वाले समय में इसको हम कैसे प्रोग्रेस करते हुए देखेंगे?
2: भारत की जो अप्रोच रही है पूरे विश्व के लिए वो एक होलिस्टिक अप्रोच रही है, और खास करके अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट में जो एक तरह से संतुलन की जरूरत है, जिसमें आपके जो ग्रीन कवर है, अमेजोन के फॉरेस्ट हैं जो लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, या वाइल्ड लाइफ है और जो ह्यूमन एलिमेंट है, इसके बीच में एक संतुलन लाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि तभी विश्व में बैलेंस रहेगा। और जिसका इफेक्ट अगर बैलेंस ना रहे तो फिर हम देखते हैं कि एक्सट्रीम वेदर से लेके जो है कॉन्फ्लिक्ट, एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ रहा है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये संतुलन बनाए रखें, और यही अप्रोच भारत की रही है। जहां तक के सवाल आ रहा है बिग कैट अलायंस का, तो ये एक बहुत जरूरी उसमें एलिमेंट था। हमने देखा कि भारत के अंदर एक चीता जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका था, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पर्सनल इनिशिएटिव था कि उसको रिहैबिलिटेट किया जाए। तो आपको याद होगा 2022 की शायद बात है कि जब हम चीता को बोट्सवाना से और साउथ अफ्रीका से लेके आए यहाँ पर भारत में, तो बिग कैट अलायंस का और उसके तरफ जो फोकस है वो उस बात से बिल्कुल दर्शाता है, मुझे लगता है। दूसरी बात ये भी है कि हम बिग कैट अलायंस हो या वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन हो, उसको टूरिज्म से भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट बन चुकी है सिर्फ भारत के टूरिज्म के लिए। अफ्रीका में हमने देखा है कि किन्या में जैसे तंजानिया के बॉर्डर पे आप देखते हैं कि हजारों की तादाद पर लोग जाते हैं एनिमल माइग्रेशन को देखने के लिए।
1: मसाई मारा
2: तो एक तरह से मसाई मारा वही एलिमेंट है कि सिर्फ उसके कई पहलू हैं। एक तो जो बैलेंस की मैंने बात की है, और दूसरी एक जो बात है कि हम अपने एनवायरमेंट और अपनी वाइल्ड लाइफ से ज्यादा और ज्यादा जुड़े। हम आजकल देख रहे हैं कि एलिफेंट कॉरिडोर जो है जो रोके जा रहे थे उनको भी खोला जा रहा है। तो इसलिए ये एक बड़ा मल्टी डायमेंशनल एक इनिशिएटिव है।
1: अम्बेसडर सज्जनहार, आखिर में चलते चलते मैं आपसे आपके विचार जानना चाहूंगी। हमने इतने बड़े मुद्दों पे चर्चा करी, और अब मैं चर्चा को विराम देने से पहले एक बहुत ही सॉफ्ट पावर की तरफ आना चाहूंगी, और वो है योगा डिप्लोमेसी। तो जैसे ही प्रधानमंत्री ने अपना कार्यभार संभाला प्रधानमंत्री के रूप में, उसी साल योगा डे UN ने डिक्लेयर कर दिया, और आज अगर हम देखें तो योगा सिर्फ एक शब्द ही नहीं है और ना ही सिर्फ एक व्यायाम का रूप है, बल्कि पूरे दुनिया में लोग योगा से प्रभावित हैं, उनके जीवन में काफी बदलाव आया है। तो योगा को एक सॉफ्ट पावर और एक सॉफ्ट डिप्लोमेटिक टूल के रूप में अगर हम देखें तो कैसे इसने पूरा एक रूप निभाया है, और योगा के साथ अगर हम कल्चरल डिप्लोमेसी को भी जोड़ दें, आप कई देशों में एम्बेसडर रह चुके हैं, तो ये सारी चीजें एक सॉफ्ट पावर के रूप में भारत के फेवर में कैसे काम करती हैं?
0: आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो जब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला 2014 में, आपको याद होगा जो पहली बार वो सितंबर 2014 में वो गए थे वहाँ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को एड्रेस करते हुए, और तब मुझे याद है जो उन्होंने कहा था, और ये उन

0: का ही था, आउट ऑफ द बॉक्स उनका ये थिंकिंग था, जो हमको कुछ ऐसा करना चाहिए, भारत की कोई ऐसी देन देनी चाहिए पूरे विश्व को, जिससे कि वो पूरे विश्व को उसका फायदा होना चाहिए। और तब उन्होंने कहा जो हमको एक अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हमें मनाना चाहिए। और मुझे याद है जो तब हमारे जो सभी वहां पर यूनाइटेड नेशंस में जो अपनी डेलीगेशन थी, उन्होंने कहा जो उनको बहुत ही ये ऐसा इसमें कोई इतना ज्यादा अट्रैक्टिवनेस नहीं लगा, परंतु फिर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नहीं, इसको हमको आगे लेकर जाना चाहिए। और फिर उसी साल हमने देखा है जो करीब पूरे विश्व के 193 देश हैं, परंतु उनमें से 177 देशों ने मिलकर इसको प्रमोट किया और इसको उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के इस जून को उन्होंने माना और पूरे विश्व ने इसको स्वीकार किया। और उसके बाद हम देख रहे हैं जो हर साल पूरे विश्व में ये मनाया जाता है और बहुत ही चाव से मनाया जाता है, बहुत ही एंथुजियाज्म से, बहुत ही एनर्जी से, इसको ऊर्जा से इसको मनाया जाता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो ये सॉफ्ट पावर की हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान बनकर उभरा है और इससे पूरे विश्व में भारत का एक डंका बजता है, जो केवल एक इसको एज एन एक्सरसाइज लिया जाए, परंतु ये बिल्कुल ही पूरी तरीके से एक होलिस्टिक तरीका है जो अपने को डेवलप करने का, अपने को आगे ले जाने का, और इससे पूरे विश्व में इसका भारत की जो छवि है इसको और भी और आगे लेकर जाया गया है। तो मैं समझता हूँ योगा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है पूरे विश्व में, और जो प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की, यही मैंने पहले भी कहा था, जो जो प्रधानमंत्री मोदी का जो लीडरशिप है, जो विजन है, वो इन सभी चीजों में दर्शाता है, जो कैसे हम जहां पर लोग नहीं सोचते जो कोई पॉसिबिलिटी है उसमें वो अपॉर्चुनिटीज निकाल लेते हैं, उसमें ही संभावनाएं निकाल लेते हैं, और उसी से पूरे विश्व में भारत का जो योगदान है उसको और आगे ले जाने में सफल रहे हैं।
1: अम्बेसडर सज्जनहा और मिस्टर अनेजा दोनों विशेषज्ञों ने ही काफी विस्तृत रूप से सारे ही विषयों पे हमें जानकारी दी, और जो हमारा डिस्कशन रहा है आज उससे मेरे लिए तो काफी ही इनलाइटनिंग रहा है। आई एम श्योर जो भी लिसनर्स इस डिस्कशन को सुनेंगे उनको ये समझ में आएगा कि पिछले 25 वर्षों की जो प्रधानमंत्री की जर्नी रही है वो सिर्फ देश को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब देश में उन्होंने जो किया वो तो किया ही, उसके साथ साथ विश्व मंच पे कैसे भारत आगे जाए उस पर भी काफी काम किया गया है। आप दोनों ही विशेषज्ञों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी, आप दोनों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, उसके लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद
2: धन्यवाद
0: दीक्षा, बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 26वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, गुजरात से विश्व मंच तक 25 वर्ष की यात्रा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

क्या आप कमजोरी, थकान या मानसिक तनाव महसूस करते हैं? तो अपना ये चार मगज यानी कि तरबूज, खरबूजे, खीरे और कद्दू यानी पेठे के बीज, जिनका सम मात्रा में सेवन आपके शरीर एवं दिमाग को प्राकृतिक रूप से पोषण प्रदान करता है।

0: चासी भाई भौनी माने पीएम किसान किस्ती पाइबा पई वार्षिक ई केवाईसी बाध्यतामूलक एथि पई pmkisan.gov.in पोर्टल रे निजर ई केवाईसी जांच करै नियंतु आपण निकटस्थ जनसेवा केंद्र को जाई एही काम करि परिबे किंबा पीएम किसान मोबाइल एप माध्यम रे निजे करि परिबे मन रखंतु जदि पोर्टल रे आपणक जमीर तथ्य नाही तेबे एग्रीस्टाक फार्मर रजिस्ट्री माध्यम रे फार्मर आईडी करंतु किस्ती टंका पाइबा पई बैंक खाता रे आधार संयोग करंतु एवं एनपीसीआई मैपिंग फर्म दाखल करंतु आज ही यही प्रक्रिया संपूर्ण करंतु अधिक सूचना पाई कृषि समृद्धि हेल्पलाइन नंबर 155333 किंबा निकटस्थ कृषि कार्यालय सह जोगाजोग करंतु।
1: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप

0: मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली। अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
0: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: ଏଥର ଶୁଣନ୍ତୁ କଥାଚିତ୍ର ଆରତୀରୁ ଗାଇଛନ୍ତି ଅନୁରାଧା ପଡ଼ୱାଲ, ଗୀତ ନିଜମ, ସଙ୍ଗୀତ ବାସୁଦେବ ରଥ।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ तस्करी, अवैध वित्तीय लेनदेन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी भाग लेने वाले गृह मंत्रियों और सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार

0: म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में 13 जिला निर्वाचन अधिकारी, 17 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 1313 बूथ स्तर के अधिकारी, पर्यवेक्षक और 14,900 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी इस कार्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सूचित किया कि 18 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष जून के अंत तक बढ़कर 111 करोड़ 41 लाख से अधिक हो गई है, जबकि मार्च 2026 के अंत तक ये लगभग 109 करोड़ 28 लाख थी। इस वृद्धि दर में तिमाही आधार पर 96% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपनी भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट में बताया है कि कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में से 4,77,00,000 से अधिक वायर्ड इंटरनेट उपभोक्ता और लगभग 106,64,00,000 वायरलेस इंटरनेट ग्राहक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि देवी वैष्णवी की दैवीय शक्ति असीम वीरता का प्रतीक है और वे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देवी पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं और प्रसन्न होने पर मोक्ष प्रदान करती हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान लश्कर के शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसिम के रूप में हुई है। ये सभी पाकिस्तानी अवैध कब्जे वाले पुंछ जिले के हाजिरा तहसील के मंडला मडारपुर के निवासी थे। दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर यातायात पुलिस ने परामर्श जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आज दिन भर यातायात प्रभावित रहने की संभावना है। कई जगह यातायात मार्ग परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें मिंटो रोड, मंडी हाउस और पटेल चौक गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर, सरदार पटेल मार्ग, क्लॉट प्लेस, आउटर सर्कल शामिल हैं। यातायात पुलिस ने प्रभावित मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने, मार्ग बदले जाने के संकेतों और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओडेंस में शुरू हो रहा है। 2 ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक चैंपियन और विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी दक्षिण कोरिया की आन सान एंग यंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। India will host the first BIMSTEC Home Ministers meeting today in New Delhi, where issues related to terrorism, transnational organized crime, narcotics radicalization, trafficking, illicit financial flows, and cyber threats will be discussed. In a social media post, Home Minister Amit Shah said, "The historic meeting underscores the shared resolve of the BIMSTEC to strengthen cooperation in tackling common security challenges, including terrorism, organized crime." He said, "Through decisive coordination, the members will remain committed to building a safer, stronger and more secure BIMSTEC region." The Election Commission of India, ECI, has stepped up efforts to ensure that every eligible citizen is included in the electoral rolls, with special camps and voter assistance campaigns being organized across several states and union territories. Chief Electoral Officers, CEOs and District Election Officers, DEOs, are taking proactive measures to help voters register their names, correct personal details and resolve discrepancies in the voter lists in line with ECI instructions. Special camps are being organized at polling booths to make voter registration and correction services more accessible. Delhi Traffic Police has issued a traffic advisory for today in view of the law and order situation in New Delhi. The Traffic Police said traffic movement is likely to be affected at various stretches, including Minto Road, roundabout Mandi House, Patel Chowk, Guru Nanak Chowk, Lodhi Road flyover, Sardar Patel Mark.

0: चासी भाई भौनी माने पीएम किसान किस्ती पाइबा पई वार्षिक ई केवाईसी बाध्यतामूलक एथि पई pmkisan.gov.in पोर्टल रे निजर ई केवाईसी जांच करै नियंतु आपण निकटस्थ जनसेवा केंद्र को जाई एही काम करि परिबे किंबा पीएम किसान मोबाइल एप माध्यम रे निजे करि परिबे मन रखंतु जदि पोर्टल रे आपणक जमीर तथ्य नाही तबे एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री माध्यम रे फार्मर आईडी करंतु किस्ती टंका पाइबा पई बैंक खाता रे आधार संयोग करंतु एवं एनपीसीआई मैपिंग फॉर्म दाखल करंतु आज ही यही प्रक्रिया संपूर्ण करंतु अधिक सूचना पाई कृषि समृद्धि हेल्पलाइन नंबर 155333 किंबा निकटस्थ कृषि कार्यालय सह जोगाजोग करंतु
1: आपणकर 4800 रिवार्ड पॉइंट्स आज ही एक्सपायर हे जिवो एबे रिडीम करि नियंतु
2: अरे वाह मोर इत्ते पॉइंट्स केमिति आसला
3: बस इमिति पचारंतु व्हाई रिवार्ड पॉइंट रो नारे आसीथिबा कोनोसी अजणा लिंक रे क्लिक करबा पूर्वरु टिके भाबंतु गोटिए व्हाई आपणकु ठकेइरु बंचाई पारे सबुबेले पचारंतु WHY कहउछंति SBI रो कॅप्टन व्हाई आपणकर साइबर रक्षक
4: श्रोतेबंधु सुणुछंति केतुटी सुगम संगीता आकाशवाणी भवानीपाटणा केन्द्रर जुगलकण्ठरे एथर आसन्तु शुणिबा अशोक कुमार रथ एवं स्मृति अञ्जना महांती गाइथिबा गीतटी मरि मु जाइछि तुम ठारु साथी काहिंकि खोजुछ मते से कथा कुहनि आगो प्रियतमा मुझे सदा तुम साथे रचना निरञ्जना दास

0: तू किंबा सेबी सारथी ऐप डाउनलोड करन तू
1: परवर्ती कंठशिल्पी राजा रथ रचना सौरांशु पटनायक मरी मु जाई तुम ठारु साथी काहिंकि खोजुछ मते प्रथम प्रेमर प्रथम चिठी मु तुम पाई आजि लेखुची एकाएका बसी सबुज काळीरे सबुज भावना भरुची

0: सबु बैंक रे अलग अलग केवाईसी कागज पत्र गोटिए चाबी हि थांदा कि
1: अच्छी ना बापा सीकेवाईसी आईडी
0: सीकेवाईसी माने
1: बैंक आपणको केवाईसी डिटेल सीकेवाईसी रजिस्ट्री रे अपलोड करिथाय आ आपणको मिलिथाय गोटे अनन्य 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी जहाँ सबु आर्थिक आदान प्रदान रे वैध होइथाय गोटे जगह रे केवाईसी अपडेट द्वारा बाकी बैंक वित्तीय संस्था रे भी अपडेट होइ जाय
0: वाह आरबीआई कहे
1: सुरक्षित बैंकिंग आडकु प्रथम पदक्षेप
2: चासी भाई भौनी माने पीएम किसान किस्ती पाइबा पई वार्षिक ई केवाईसी बाध्यतामूलक एथि पई pmkisan.gov.in पोर्टल रे निजर ई केवाईसी जांच करै नियंतु आपण निकटस्थ जनसेवा केंद्र को जाई एही काम करि परिबे किंबा पीएम किसान मोबाइल एप माध्यम रे निजे करि परिबे मन रखंतु जदि पोर्टल रे आपणक जमीर तथ्य नाही तेबे एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री माध्यम रे फार्मर आईडी करंतु किस्ती टंका पाइबा पई बैंक खाता रे आधार संयोग करंतु एवं एनपीसीआई मैपिंग फॉर्म दाखल करंतु आज ही यही प्रक्रिया संपूर्ण करंतु अधिक सूचना पाई कृषि समृद्धि हेल्पलाइन नंबर 155333 किंबा निकटस्थ कृषि कार्यालय सह जोगाजोग करंतु
3: लेखना को चिठी एमिति भाषा रे मनमो बुझेना बुझेना मिलन सपने ए मन अधीर आउ किछि मुत चाहेना गीतटी को गाइछंती शिल्पी सागरिका नायक गीत रचना सौरांशु पटनायक।

0: ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ମାସିକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଞ୍ଜନ, ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ଗୋଟାଏ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀରେ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ କନକଲତା। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आए ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत में स्टार्टअप का काफी विस्तार हुआ है।
2: भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। 45% से अधिक स्टार्टअप में कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है, यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत का आर्थिक विकास एक मजबूत नींव पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 7.8% रही। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है और बैंकिंग प्रणाली कई दशकों में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
3: ये केवल नशे का कारोबार नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। ये एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डायवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेन देन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
1: आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति पर गृहमंत्री ने इस दिशा में सामूहिक संकल्प का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी आतंकी नेटवर्क को पनाह, भर्ती, प्रशिक्षण, धन या पड़ोसी देशों के विरुद्ध गतिविधियां चलाने के लिए क्षेत्र में कोई जगह न मिले। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगे। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कूटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को हिरासत में ले लिया है। ये लोग राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर को

0: निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया था। पूर्वी दिल्ली में 3 नए प्रदर्शन स्थल रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी मैदान सूचित किए गए हैं। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओडेंस में शुरू हो रहा है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगी। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत भी आज अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 554 अंक बढ़कर 72,479 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 176 अंक की वृद्धि के साथ 22,540 पर पहुंचा। नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये दिन साहस, शांति और दिव्य शक्ति की प्रतीक देवी चंद्रघंटा को समर्पित है। उन्होंने सभी के लिए सुख, समृद्धि और सफलता की कामना की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said the centre has embodied the principle of power to empower in its governance approach and work culture. Speaking at the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi, Mr. Modi said India's progress is rooted in collective growth and shared opportunities. Mr. Modi stated that digital power has opened up greater opportunities for India.
2: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं। करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस है। 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स है। हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
1: The Prime Minister said India's economic growth is taking place on a strong foundation amidst global uncertainty. He said the GDP growth stood at 7.8% in the first quarter of this financial year. Mr. Modi highlighted that India had lifted 25 crore people out of poverty over the past decade.
2: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो, और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: India is hosting the first Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation, BIMSTEC Home Ministers meeting in New Delhi. This historic meeting highlights the collective commitment to combating terrorism, transnational organized crime, narcotics, radicalization, human trafficking, illicit financial flows, and cyber threats. Speaking on the occasion, Union Home Minister Amit Shah said BIMSTEC has emerged as an important platform for regional integration, economic cooperation and collective security. He said India has always been committed to peace and human welfare, guided by the principle of Vasudhaiva Kutumbakam. Mr. Shah reiterated that India respects the sovereignty and territorial integrity of all countries and believes in the peaceful resolution of disputes. Reaffirming India's policy of zero tolerance towards terrorism, the Home Minister called for a collective commitment to ensure that no terrorist network finds space within the region for shelter, recruitment, training, financing, or activities against neighbouring countries. Principal Secretary to Prime Minister P.K. Mishra has said data collection and analysis are essential for evidence-based policy making, particularly in the era of artificial intelligence. Addressing the Ministry of Statistics and Programme Implementation Conclave at Bharat Mandapam in New Delhi today, Mr. Mishra said data would form the foundation of India's development journey. He added that India had undergone major transformation over the past decade, with significant progress in infrastructure.

0: digital public services, financial inclusion and entrepreneurship. Canadian Foreign Minister Anita Anand will be on a two-day visit to India from today. During her visit, she will meet External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and Skill and Development and Entrepreneurship Minister Jayant Chaudhary tomorrow. Canada's High Commissioner to India Christopher Kuta said Canada is looking to strengthen bilateral trade with India through a proposed free trade agreement, greater investment and increased movement of people between the two countries. In Nepal, more than 100 foreign trekkers are stranded at various locations after flooding over the weekend swept away hiking trails and bridges in the country's central region. Authorities rescued 321 people, including 12 foreigners today, after a pre-dawn landslide in Gorkha district about 100 kilometres west of Kathmandu blocked the Buri Gandaki River, triggering downstream flooding. Rescue and relief operations are underway. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.8% higher in the afternoon session today. Sensex climbed 554 points to 72,479 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: Srutabandhu Karchikrama Sunuchanti, Akasbani, Papanipatuna Kendraru Karchikrama Makendraru. प्रचारित हेउछि मीडियम वेभ रे 248 मीटर तथा 1206 किलोहर्ज एफएम जोके 100.3 मेगाहर्ज एवं न्यूजन एआईआर एप माध्यम रे आसंत सुनिबा चासर कथा
2: एंता तो अमर चासी दादा माने बरस सारा भिन्न भिन्न प्रकार चास करिथिसन जेंता कि आलू सारु बैगन कुंद्रु आरु लइनी तो ये सब चाष करवार भितर आम किसी एंता भी चाषी दादा मैंने अच्छे जेन मैंने तकर समिया देखिकी ये प्याज चाष भी करसने ये खावा के जेनता स्वाद तार चाहिदा भी चार बैटे बेसी ए किसी लोग अच्छा से मैंने यहाँ के कंचा खाइबा के पसंद करवार बिल कि आर किसी लोग इटा के भिने भिने तरकारी साग तुन्ने रांधिकी भी खावा के भल पाई सने मसला सने प्याज के गसी दीछन बोले तार सुखे नहीं खाबार लोग भी खाबा है प्याज नु भिटामिन सी पोटासियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन आरु फॉस्फोरस भलिया पोषक तत्व सबु इ भितरु आमके मिलिथिसिए हंता जदि देखमा बोले प्याज गुटे लाभजनक फसल है रबि ऋतु ने प्याज करा जाउथिबार बेलके आमर राज ने प्याज रो उत्पादन के बढ़ावार बेसी आवश्यकता रहिचे ए इ सबु कथा के दृष्टि ने रखी करी आमर चासी दादा मने प्याज चास करबे बोले से मने लाभ हे रहबे काहे के जे प्याज चास लागि आमर राज रो जलवायु पूरा उपयुक्त है तो ये प्याज चाष लगी आमर चाषी दादा मन के किन किन किसम सब दरकार हेबा केनता जलवायु ने ये चाष कले भल हेबा ये कथा गुटे आमर चाषी दादा मन के निहाती भाव रे जानबा के पड़बा ए जेन अंचल ने अधिका ठंडा कि गरम ने होथिबा तार सने अधिका वर्षा कि खरा ने होथिबा सेंता भलिया जागा ये प्याज चाष लगी पूरा उपयुक्त है प्याज फसल भल वृद्धि लगी शतकड़ा 70 भाग आर्द्रता आवश्यक होथिबार बेलके इ चास लगी उन्नत किसम मने हेले पुसा रेड पुसा रत्नार अर्का प्रगति एग्री फाउंड लाइट रेड पुसा व्हाइट राउंड पुसा व्हाइट फाट अर्का पीताम्बर इ सब भल भल किसम मने अच्छे जेंटा के कि आमर चासी दादा मने लगे करी इनु भल लाभ पाई पारबे दोरसा आरु पटुमाट ने करा जाउथिबार चास नु भल उत्पादन मिली पारथिसिए सेन्ता आमर चाषी दादा मने नवेम्बर मास नु प्याज बिहन लगाबार आरंभ करबे बोले ठीक जनवरी मास आड़के तली रोईबा उपयुक्त समय इटा प्याज रोबार लगी जमी के भल करी तसी दी करी माइट के गुण करी देबा के पड़बा ए सेन्ता प्याज लगाबार 6 सप्ताह पछि एकर पिछा 20 किलोग्राम पोटास प्रयोग करबा के पड़बा आरो ई समय ने एक रोबार काम के भी देखबा के पड़बा तो इने चाषी दादा मने पटिके भलिया करबा के पड़बा जेनता की अलगा चाष भी इन सहज ने जेन्ता ही पार्बा धाड़ के धाड़ 6 इंच आरु गज के गज 3 इंच व्यवधान रखी करी तली रूपबा के पड़बा ए लुआ काम सरीगला पछि हल्का जलसेचन करी दबा टार टिके भल हेबा सेन्ताइन आर गुटे कथा आसुचे प्याज धरवार लगी तापमात्रा 20 डिग्री नु 23 डिग्री सेल्सियस भितरे एक आईटा रहबार आवश्यक है सेन्ता भी कम उत्ताप थिबार जागा ने प्याज नड़ा बाहरी आईसीए आरु जदि तापमात्रा हठात ने बढ़ी जाउचे बोले प्याज जल्दी पाकल ही करी प्याज रो आकार छोट ही जैसी तो इन्हें गुटे मुख्य कथा आसुचे कि ठंडा समय ने चास करा जाउथिबार किसम मनकर लगी 12 नु 13 घंटा पद के

0: for regional integration, economic cooperation and collective security. UPI merchant discount rate on select person-to-merchant transactions to be implemented after Diwali. IMF raises India's GDP growth forecast to 7% for 2026-27. Canadian Foreign Minister Anita Anand to arrive on a two-day visit to India from today, and Shefali Verma and Shubman Gill named ICC Women's and Men's Player of the Month for September 2026. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत हो रही है उन्होंने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया गृहमंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच ₹2000 से अधिक के लेनदेन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू आईएमएफ ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से दो दिन के भारत दौरे पर और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है उन्होंने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है बल्कि ये दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल शक्ति ने भारत के लिए नए अवसर खोले हैं श्री मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है
2: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं हमारे यहां अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका हुआ है
2: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा क्लाइमेट चेंज हो वाटर गवर्नेंस हो पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे नए अवसर पैदा करे
1: श्री मोदी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 7.8% रही उन्होंने कहा कि आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $700 अरब से अधिक हो गया है और बैंकिंग प्रणाली कई दशकों में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है श्री मोदी ने कहा कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है
2: पावर के पर्पज पर जो फोकस है यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है सरकार के पास अथॉरिटी है लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो सशक्त हो और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत के नवाचारों का काफी विस्तार हुआ है
2: भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते थे अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं 45% से अधिक स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं

0: मंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के कृपया इसे फिर से सुन लें। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया।
1: ये केवल नशे का कारोबार नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। यह एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डायवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेनदेन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी की समस्या मानवाधिकारों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
1: मानव तस्करी भी हमारे साझा सुरक्षा और मानव अधिकारों के समक्ष गंभीर चुनौती है। पीड़ितों की पहचान, बचाव, सहायता, पुनर्वसन और सुरक्षित वापसी में सहयोग हमारे सामूहिक प्रयास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहना चाहिए।
0: श्री शाह ने खुफिया जानकारी, कानून प्रवर्तन, वित्तीय निगरानी और सीमा प्रबंधन एजेंसियों के बीच त्वरित सहयोग और समन्वय की जरूरत पर बल दिया। श्री शाह ने आतंकवादियों को मिलने वाले धन और संगठित अपराध और बेहतर समन्वय पर भी बल दिया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए आज यह निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 6.4% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। आईएमएफ की प्रमुख विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा गया है कि इन अनुमानों में ये सुधार सुदृढ़ घरेलू मांग और मजबूत सेवा गतिविधियों के कारण आर्थिक वृद्धि को मिली अपेक्षा से अधिक गति के कारण किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2027 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई मुक्त व्यापार समझौतों से वैश्विक आर्थिक गतिविधि को बल मिलेगा और आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ होगी। भारत के कोस्टारिका के सैन जोस में स्थित नए रेजिडेंट मिशन ने कार्य करना शुरू कर दिया है। ये मध्य अमेरिका में अपने राजनयिक दायरे को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि मिशन भारत और कोस्टारिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मिशन आपसी राजनीतिक जुड़ाव को सुगम बनाएगा, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करेगा। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगी। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कोटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री तथा उद्योग और व्यापार मंत्री कारिल हावलिचक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति का और विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए आंकड़े एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
2: नई दिल्ली में भारत

0: मंडपम में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एक सम्मेलन में श्री मिश्रा ने कहा कि आंकड़े भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया ताकि आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया में एक रूपता लाई जा सके और समान परिभाषाओं तथा मानकों को अपनाया जा सके। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय आंकड़े इसीलिए भी आवश्यक है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण की प्रगति को मापा जा सके और एक समृद्ध समावेशी नवोन्मेषी और सतत राष्ट्र बनने की दिशा में देश की प्रगति का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में हम बता रहे हैं कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास को कैसे स्थापित किया गया है।
2: 2014 से केंद्र सरकार ने एक्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर भारत को एक नए राजनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित किया है। गृह मंत्रालय के अनुसार क्षेत्र में उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं में 70% से अधिक की भारी कमी आई है। सुरक्षा के माहौल में ये बड़ा सुधार बोडो, कार्बी और उल्फा गुटों सहित सशस्त्र समूहों के साथ हुए एक दर्जन से अधिक ऐतिहासिक शांति समझौतों का परिणाम है, जिसके चलते 10,000 से अधिक उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को कई क्षेत्रों से हटाया गया है। इस सुरक्षित माहौल का लाभ उठाते हुए केंद्र सरकार ने क्षेत्र में रिकॉर्ड निवेश किया है। पीएम डिवाइन जैसी समर्पित योजनाओं के माध्यम से 8 राज्यों में बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है, जिसमें हर मौसम के अनुकूल राजमार्गों, नए रेलवे नेटवर्क और हवाई अड्डे तक शामिल है। 2023 में अपने असम दौरे के दौरान श्री मोदी ने कहा था कि पूर्वोत्तर भारत देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में से एक बनने की राह पर है।
3: असम में नॉर्थ इसमें सरकार और समाज के सामूहिक प्रयासों से जैसे जैसे शांति लौट रही है, वैसे वैसे पुराने नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। लंबे समय तक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आपसा नॉर्थ इसके अनेक राज्यों में रहा है, लेकिन बीते 8 सालों के दौरान स्थायी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था लागू होने के कारण हमें आपसा को नॉर्थ ईस्ट के कई क्षेत्रों से हटा दिया है। बीते 8 सालों के दौरान नॉर्थ ईस्ट में हिंसा की घटना में करीब 75% की कमी आई
2: है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार का यह समग्र दृष्टिकोण पूर्वोत्तर भारत को एक सीमांत इलाके से राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक विकास इंजन में तेजी से बदल रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली में 5 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को महिला एशिया कप और एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन और महत्वपूर्ण मैचों में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल को वेस्टइंडीज के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए रिकॉर्ड 5वीं बार आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। डेनमार्क बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से ओडेंस में शुरू हो गया है। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु पहले दौर के मुकाबले में जर्मनी की यवोन ली से मुकाबला करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और के श्रीकांत भी आज अपने अपने पहले दौर के मुकाबले खेलेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 598 अंक बढ़कर 72,523 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 189 अंक की बढ़त के साथ 22,552 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत हो रही है। उन्होंने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच

0: बताया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू। आईएमएफ ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी कटक आपण माने आंचलिक संवाद सुनी परिबे एई विज्ञापन परे।
2: बन्या हेउ बा महाबात्या सबु परिस्थिति रे
3: गारु सहर जाए सबु स्थान रे
2: आबाल वृद्ध वनिता समस्तंक पाई
3: जुआंग ओ सांतालंक थारु बंडा एवं कोयांक जाए सबुरी भाषा रे
2: केवल आकाशवाणी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल शक्ति ने भारत के लिए नए अवसर खोले हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत नींव पर टिकी है।
1: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
0: भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध धन प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया।
2: ये केवल नशे का कारोबार नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। यह एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डायवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेनदेन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
0: श्री शाह ने बिम्स्टेक के सभी सदस्य देशों से सहयोग सुदृढ़ करने की अपील की ताकि कोई भी अपराधी या आतंकवादी कानून से बच ना पाए। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए आज यह निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच सभी यूपीआई लेन देन निःशुल्क रहेंगे। एमडीआर शुल्क केवल ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर लागू होगा। लगभग 96% ग्राहक से व्यापारी यूपीआई लेन देन इससे अप्रभावित रहेंगे। व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी श्रेणी के अंतर्गत यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से प्रति माह 1,00,000 रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों को पहले की तरह लेन देन पर कोई एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। पंजाब के मानसा में आज एक दवा विक्रेता ने कथित तौर पर परविंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या कर दी। परविंदर दवा विक्रेता के दुकान पर कथित रूप से मादक पदार्थ बेचने का विरोध करने के लिए गए थे। भाजपा, शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने घटना की निंदा की है। मानसा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वैभव चौधरी ने कहा है कि हत्यारे को शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए विशेष दल गठित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 6.4% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। IMF की प्रमुख विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा गया है कि इन अनुमानों में ये सुधार सुदृढ़ घरेलू मांग और मजबूत सेवा गतिविधियों के कारण आर्थिक वृद्धि को मिली अपेक्षा से अधिक गति के कारण किया गया है। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगी। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कल तक ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और आंध्र प्रदेश में अगले 2 दिन के दौरान बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।

सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूनाराम देवांगन और कृष्ण देवांगन जी ने। लिखते हैं, जिंदगी में कई लोग आते हैं, कुछ लोग सिर्फ मिलने के लिए, कुछ सिखाने के लिए और कुछ हमें बेहतर बनाने के लिए। इन लोगों के द्वारा जिंदगी हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर सुविचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू। अगला संदेश मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी का। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, अरजान और अबान अब्बासी। और गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहल्ला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रंभारानी निषाद, निखिल कुमार निषाद, नैतिक कुमार निषाद और कुमारी पुष्पांजलि निषाद के साथ साथ स्वप्निल कुमार निषाद। इदो ग्राम इंदु पोस्ट कारकल तालुका जिला उडुपी कर्नाटक राज्य से एच सिद्धार्थ जी ने लिखा है, उमंग के हर कार्यक्रम श्रोताओं के ज्ञान के विस्तार को बढ़ावा देने में बेहद सहायक है। अनजान नए नए विचारों पर रोशनी फैलती है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि ऐसे ज्ञान से भरे कार्यक्रम अधिक से अधिक प्रसारित करें। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। कच्छ भुज से जगदेश जौहरी, पूजा और पायल कुमारी। आप सभी श्रोताओं का हम आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने हमें संदेश भेजा। और आप सबसे हमारा निवेदन है, उमंग के साथ जुड़े रहिए उमंग से और न सिर्फ सुनिए लेकिन दूसरों को भी सुनाइए हमारा उमंग कार्यक्रम। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हम ये भी जानिए श्रृंखला में आपके लिए लेकर आते हैं नई नई जानकारियां। तो इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ आविष्कारों की, खासकर ऐसे छोटे छोटे आविष्कारों की जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। आज हम एक ऐसी चीज की कहानी लेकर आए हैं जो इतनी छोटी है कि उंगलियों के बीच में आसानी से छिप जाए, लेकिन उस छोटी सी चीज ने इंसान के लिए आग जलाना बेहद आसान बना दिया। श्रोताओं, आप समझ गए होंगे ना, हम बात कर रहे हैं माचिस की। जी हाँ, माचिस। इसे हम लगभग रोज देखते हैं, डिब्बी खोली, तीली निकाली और घिसी, बस आग जल गई। सब कुछ कितना सामान्य लगता है ना, लेकिन श्रोताओं, क्या कभी आपने सोचा है कि ये छोटी सी बारूदी तीली बनी कैसे? हमारा उत्तर होगा शायद नहीं। तो प्रस्तुत है आज की कहानी इसी छोटी सी तीली की बड़ी यात्रा की। तो श्रोताओं, पहला सवाल ये उठता है कि जब माचिस नहीं थी तो लोग आग कैसे जलाते थे? ये जानना तो सच में बहुत रुचिकर होगा ना। हजारों हजार वर्षों तक आग जलाना एक मेहनत का काम था। आदिकाल में लोग चकमक पत्थरों को टकराकर, लकड़ी रगड़कर या चिंगारी पैदा करके आग जलाने की कोशिश करते थे। ये जंगलों में यदि आग लग जाती थी तो उसी दावानल से लोग आग का लाभ प्राप्त करते थे। और हाँ, वे ये भी कोशिश करते थे कि आग को जलाए रखें। श्रोताओं, मुझे तो आज भी याद है कि पहले गांव के कुछ घरों में लोग घूरे पर या आंगन में आग जलाए रखते थे और पूरा गांव उनके पास आग मांगने के लिए आता था, है ना? याद है आपको? ये आपसी मेलजोल और सहयोग की भावना का एक अनूठा उदाहरण है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही था। लेकिन जरा सोचिए, अगर बारिश का मौसम हो, लकड़ियां गीली हों और तुरंत आग चाहिए, तब कितनी परेशानी होती होगी। और तब इंसान जरूर सोचता होगा कि काश कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे आग जल जाए। और यही इच्छा धीरे धीरे अलग अलग प्रयोगों का कारण बनी। तो आइए जानते हैं पहली माचिस कब और कैसे बनी। श्रोताओं, एक खास बात आपको बता दें कि आज की तरह आसानी से असुरक्षित जलने वाली माचिस अचानक किसी एक ही दिन में नहीं बनी। कई वैज्ञानिकों और आविष्कारकों के प्रयोग के बाद इसका विकास हुआ। तो आइए चलते हैं 19वीं शताब्दी की शुरुआत में। यूरोप में एक ऐसी रासायनिक माचिस बनाने के प्रयोग होने लगे जिन्हें किसी सतह पर रगड़ने से आग पैदा हो सकती थी। शुरुआती रासायनिक माचिस आज की माचिस जितनी सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे रसायन इस्तेमाल होते थे जो हवा या ताप के प्रभाव में आकर तुरंत आग पकड़ लेते थे। इसकी वजह से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था। तो फिर धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने ऐसी माचिस बनाने पर काम शुरू किया जो उपयोग में आसान होने के साथ साथ ज्यादा सुरक्षित भी हो। और फिर आती है हमारी आज की माचिस। श्रोताओं, 19वीं शताब्दी में फास्फोरस से जुड़ी तकनीकों और घर्षण से जलने वाली माचिस के विकास ने इस दिशा में बड़ा बदलाव किया। वैज्ञानिकों ने ऐसी लकड़ी से तीली बनाई जो खुद भी आसानी से आग पकड़ लेती थी। और फिर तीली के सिरे पर ऐसे

रासायनिक पदार्थों के मिश्रण का इस्तेमाल किया गया जो घर्षण और गर्मी से आग पैदा करने में मदद करते थे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन श्रोताओं अब प्रश्न है कि डिब्बी के किनारे वाली खुरदरी पट्टी का विकास कैसे हुआ जिस पर घिसकर हम माचिस जलाते हैं। तो आपको बता दें कि आधुनिक माचिस में तीली और डिब्बी के घर्षण वाली सतह पर अलग अलग रासायनिक पदार्थ रखे जाते हैं। तीली को उस सतह पर रगड़ने पर घर्षण से गर्मी पैदा होती है और रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण लौ जल उठती है। हम समझते हैं कि हम सिर्फ तीली घिस रहे हैं, लेकिन श्रोताओं उसके पीछे रसायन विज्ञान की पूरी कहानी चल रही होती है। आइए श्रोताओं जानते हैं अब एक बड़ी रोचक बात कि इसका नाम माचिस क्यों पड़ा या इसका नाम माचिस कैसे पड़ा। भारत में इसे आमतौर पर माचिस कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे मैच बॉक्स कहते हैं। मैच शब्द एक फ्रांसीसी भाषा के मैश्चे शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है दिए या मोमबत्ती की बाती, जिसे आग पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और जब ब्रिटिश रसायन शास्त्री जॉन वॉकर ने घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई तो आग सुलगाने वाली उस तीली को भी मैच कहा जाने लगा। तो मैच यानी तीली, और इसे डिब्बी या बॉक्स में रखे जाने के कारण ये मैच बॉक्स हो गया। और धीरे धीरे यही शब्द हिंदी में माचिस बन गया, है ना। खाना बनाने से लेकर मोमबत्ती जलाने तक लंबे समय तक माचिस ने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैसे अब तो हमारे पास लाइटर्स भी हैं, लेकिन माचिस की भूमिका अभी भी कम नहीं हुई है। जी हाँ श्रोताओ, तो अगली बार जब आप माचिस की एक तीली देखें तो याद रखिएगा उस छोटी सी लकड़ी के पीछे सदियों की आग, मेहनत, प्रयोग और विज्ञान की कहानी छिपी है। और हाँ, बच्चों के लिए एक खास बात, खासतौर से हम अपने श्रोता विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं, आपको हम बताना चाहते हैं कि माचिस से प्रयोग करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। थोड़ी सी लापरवाही भी खतरनाक हो सकती है। विज्ञान को समझिए, उससे सीखिए और हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखिए। तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की जानकारी, आशा है आपको भी पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, किस ब्रिटिश रसायन शास्त्री ने पहली बार घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, किस ब्रिटिश रसायन शास्त्री ने पहली बार घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई। आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर NCERT बुक्स PDF टाइप कीजिए, वेबसाइट के अनुदेशों का पालन कीजिए और विकल्प पर जाकर मनचाही पुस्तक डाउनलोड कीजिए। इन्हीं पुस्तकों का ध्वनि रूप भी आपको NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। तो निवेदन करते हैं इस चैनल को यानी NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो श्रोताओं अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम। इसका शीर्षक है भारत प्यारा। कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक की एक नज्म पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के द्वारा भारत भूमि के गौरव का गान किया गया है तथा बताया गया है कि हमारा देश भाषाई, भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण कितना अद्भुत और सुंदर है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर।
2: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
3: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतन जीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतन जीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेना नायक थे।
2: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतन जीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
3: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा।

0: अर्दिशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
2: जवानों,
3: जी सर,
2: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
3: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
2: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
4: जी सर।
2: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
4: जी जनाब।
2: हाथ गोला हाथ में लो।
4: ले लिया जनाब।
2: अब पिन रिलीज करो।
5: फेंको,
4: फेंका जनाब।
5: अरे अरे, ये क्या हुआ,
4: ये क्या हुआ? अरे बचो बचो बचो,
0: साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
1: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली किसी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
4: ये आदि क्या कर रहा है?
1: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
6: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
7: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
8: सही में
7: बहादुर सैनिक हो तुम। हाँ।
0: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
9: May I come in, sir?
6: Yes, come in.
9: Sir.
6: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
9: सर।
6: वेल डन एडी, तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
9: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
6: हाँ हाँ, कहो।
9: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
6: ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
9: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
6: गो अहेड यंग मैन।
9: सर।
0: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
1: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
0: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।

0: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
1: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
2: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
1: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
3: जी जनाब।
4: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
5: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बंट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
2: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
5: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट द गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
2: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
5: फायर।
2: सर, ये टैंक तो गया।
5: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है। जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर।
2: सर, ये टैंक तो गया।
5: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
2: यस सर।
6: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौविंडा छोड़कर चली गई।
0: इस तरह चौविंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी, और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरम उत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
6: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटन टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों

0: घिर गया। तारापोर को आंख की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए, किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: अभी आप सुन रहे थे एक खूबसूरत कार्यक्रम। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अर्शद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
3: प्रचरकुल CIET द्वारा प्रायोजित धारावाहिक कार्यक्रम उमंग शुणुले यार 1392 अध्याय। श्रोताबंधु आपण मैंने कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी भवानीपाटना केन्द्र वर्तमान समय अपराह 5:30 प्रचार करुच्छू युवश्रोता कार्यक्रम युववाणी। आज शुणु यार सीधा प्रसारण कार्यक्रम गीतटे मितटे एपण मैं नहीं जाऊँ आम टक् स्टूडियो को किंतु ता पूर्व किसी विज्ञापन।
4: QR कोड स्कैन करों तू, 5000 रो कैशबैक पाऊं तू, बा आज ही बढ़िया दिन हो।
5: फसिला। UPI पिन एंट्रिंग केवल और टंका पटे में पाई उद्दिष्ट।
6: RBI कहे?
7: सचेतन हों तू, सतर्क रहों तू।
8: ओहो नवरिया रो लव स्टोरी रो मैच हल आरंभ। उभय खाइले इटालियन क्विजिन, वेटर फोपड़ीला स्पिन, 4000 रो बिल आसिला। रोहन रो हृदय जोर रे धक धक हेला। जाई थिला भूली से नेबा को निजरो वॉलेट। रिया है गला कूल आउ कला डिजिटल पेमेंट। आपनो भी QR कोड स्कैन करी के UPI रे करंतु पेमेंट। डिजिटल पेमेंट द्वारा जीतंतु लाइव रो प्रति टूर्नामेंट।
9: भारत करे डिजिटल देय प्रदान
10: सहज अटे प्रतिदिन देण देण
11: तेबे आरंभ करिबा इन्वेस्टिंग रा पाठ।

0: दंगच हो।
1: भैया नमस्कार।
0: नमस्कार भाई, शुभ संध्या।
1: मुँ नरेन्द्र कुमार साहू आर बड़ना थर्ड पटगुरु कहूँ।
0: आज्ञा भाई, केमिति अछंती? बहुत दिन परे फोन कले।
1: हाँ भल अच्छे सब बोल लगाए भी जी रहे।
0: हाँ, सेटा मुँ आपन को बहुत माने दिन परे, बहुत मास परे मुँ आपन को सह कथाबार्ता होछि।
1: आज्ञा
0: आज को गीत सुनिबे
1: आपण
0: भाई?
1: पसंदरे गोटे गीत शुणे देवे जहाँ जे कौन गीत।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ आज्ञा
0: ଆଉ ଘରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ।
1: ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଜ୍ଞା
0: ହଁ ଭାଇ, ହଁ ଭାଇ, କେଉଁଠି
1: ହଁ
0: ଅଛନ୍ତି?
1: ରହୁଛି।
0: ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ।
1: ହଁ ହଁ ହଁ
0: କ'ଣ କରୁଥିଲେ?
1: ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣୁଥିଲି ତ ଆଉ ଇଏ ଟେଲରିଂ କାମ ଚାଲିଥିଲା।
0: ଓ, ଟେଲରିଂ କାମ ଚାଲିଥିଲା
1: ହଁ ଆଜ୍ଞା
0: ମାନେ? ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ତ ମାନେ ଦଶହରା ଅଛି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିବ, ତାହେଲେ ବହୁତ କାମ ବି ରହୁଥିବ।
1: ହଉ।
0: ହ୍ୟାଲୋ,
1: ହଁ ଆଜ୍ଞା
0: ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ,
1: ହଁ ରହୁଛି।
0: ନମସ୍କାର।

0: इंकार इस स्थापित तथ्य को नहीं बदल सकता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर आज कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि एक विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों का सेवन देश के युवाओं की क्षमता में बाधा डाल सकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है, लेकिन उसे अपने कार्यकाल के दौरान आयोग की कार्यप्रणाली दिखाई नहीं देती। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो NDA की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देशहित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है, और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ कभी भी देने का प्रयास नहीं किया।
0: शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रांची में एक छात्र की दुर्भाग्यपूर्ण मौत की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है। समिति घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जांच करेगी और संस्थान में दिशा निर्देशों के पालन का आकलन करेगी। आयुष मंत्रालय ने त्वचा संबंधी बीमारियों के उपचार और प्रबंधन के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी के साथ योग को शामिल करते हुए मानक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य आयुष की विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में उपचार की प्रक्रिया को अधिक एकरूप बनाना, गुणवत्ता सुनिश्चित करना और वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित चिकित्सा को बढ़ावा देना है। UPI पर ग्राहक से व्यापारी के बीच ₹2,000 से अधिक के लेनदेन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बताया कि UPI और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है। ओडेंस में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन के पहले दिन किदाम्बी श्रीकांत ने फ्रांस के अर्नोड मर्कले को हराकर पुरुष सिंगल्स के अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने जापान की नातुस्की नेदेरा को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi has said that the centre has embodied the principle of power to empower in his governance approach and work culture. Speaking at the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi, Prime Minister Modi said that India's economic growth is taking place on strong foundation amidst global uncertainty. Mr. Modi said country's progress is rooted in collective growth and shared opportunities. He said the government's constant endeavour is to ensure that India's capabilities open new doors of opportunities for other countries as well.
3: नॉलेज सिर्फ कुछ लोगों को आगे बढ़ाएगी या करोड़ों लोगों के लिए नए अवसर बनाएगी? क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है, और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड। और इसलिए आज मैं यहाँ जिस विजन के साथ आया हूँ वो है पावर टू एम्पावर।
2: UPI Merchant Discount Rate MDR on select person-to-merchant transactions will be implemented after Diwali. In a social media post, National Payments Corporation of India said that UPI and Services Steering Committee today decided that keeping in mind the festive season, MDR on select person-to-merchant UPI transactions will be implemented immediately post Diwali.

0: सेबी द्वारा इन्वेस्टर जागरूकता प्रारंभ। अधिक सूचना पाई सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट को विजिट करंतु किंबा सेबी सारथी ऐप डाउनलोड करंतु।
1: शुणंतु असंता कलर विभिन्न अधिवेशन रे प्रचार भक्तवा कार्यक्रम संपर्क रे आगामी काली प्रथम अधिवेशन रे सकाळ 6:10 रे सुनिबे भक्ति गीतर कार्यक्रम वंदना चेतना चिंतन प्रचार करिबु 6:30 रे सकाळ 6:35 रे प्रचार करिबु अति बड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद् भागवत गीत गीतांजलि शुणिबे केतोटी भक्ति गीत सकाळ 7:25 रे शिल्पी माने हेले सुभाष दास नमिता अग्रवाल सकाळ 7:40 रे रहिछि कार्यक्रम चासर कथा पारंपरिक संगीतर कार्यक्रम पुरातनी शुणिबे केतोटी छंद सकाळ 7:45 रे शिल्पी हेले राजलक्ष्मी साहू एवं शंकरषण पात्र राज्यस्तरीय प्रसारण में पीठ परिक्रमा रिले कर प्रचार करिबो आकाशवाणी कटक केन्द्र सकाळ 8:30 रे एथरे शुणिबे आकाशवाणी कटक केन्द्र द्वारा प्रस्तुत माँ भद्रकाली प्रयोजना अनंत चरण जेना सकाळ 8:45 रे प्रचार करिबो कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकृत महाकाव्य वैदेश विलासर संगीतात्मक परिवेषण भारतर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जनसेवार 25 वर्ष पूर्ति उपलक्षे एक विशेष कार्यक्रम रिले कर प्रचार करिबो आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र सकाळ 9:10 9:00 शुणिबे हिंदी कथाचित्र गीत ओडिया कथाचित्र गीत प्रचार करिबो 9:45 रे पूर्वाह्न 10:10 शुणिबे विशेष कार्यक्रम खोला झरका द्वितीय अधिवेशन रे दिन 12:00 लोकगीत क्रम रे शुणिबे शिल्पी राधेश्याम दास एवं साथींक द्वारा परिवेशित घुमुरा गीत सुगम संगीत शुणिपारे 12:30 रे शिल्पी माने हेले ज्योत्सनारायणी मुदुली मानस कुमार दत्त प्रमोद कुमार बेहरा एवं स्मिता त्रिपाठी दिन 1:10 रे कार्यक्रम चासर कथा शक्ति रूपा कार्यक्रम प्रचार करिबु दिन 1:20 रे दिन 2:45 शुणिबे हिंदी कथाचित्र गीत तृतीय अधिवेशन रे अपराह्न 5:00 प्रायोजित कार्यक्रम उमंग अपराह्न 5:30 रे युववाणी शुणिबे खेल ओ खेलाळी संध्या 6:30 रे समन्वित कार्यक्रम उज्ज्वल आम देश राति 7:25 रे जिला हलचल क्रम रे संबलपुर जिल्ला संपर्क रे ए कार्यक्रम द्वारा रिले कर प्रचार करिबु आकाशवाणी कटक केन्द्र रु राति 7:30 प्रचार करिबु चासी भाई भोनी मानक पय कार्यक्रम चासबास गीत गजल रो कार्यक्रम सुनि परिबे राति 8:00 शिल्पी हेले गणेश सेगडे कैलाश खेर एवं सोनू ककर राति 8:15 आंचलिक गीत क्रम रे सुनिबे ऋतुराज माझी एवं साथींक द्वारा परिवेशित कलाहांडिया गीत स्पोर्ट्स कैन 8:30 9:15 स्पॉटलाइट 9:30 चर्चा का विषय है ए समस्त कार्यक्रम रिले कर प्रचार करिबु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र रु राति 10:00 शुणिबे केतोटी हिंदी कथाचित्र गीत शास्त्रीय संगीत क्रम रे शुणिबे राति 10:30 उस्ताद गुलाम मुस्ताफा खांक शास्त्रीय गायन एवं श्रीमती शोभा गुर्तुंक शास्त्रीय गायन एथरे शुणिबे राग ठुमरी मिश्रा तिलक मिश्रा पहाड़ी ठुमरी मिश्रा झिंझोटी एथिला कार्यक्रम संपर्कित सूचना आपण मैंने कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी भवानीपाटना केन्द्र रु परवर्ती कार्यक्रम शुणिपर किसी विज्ञापन एवं सूचना पर
2: चासी भाई भौनी माने पीएम किसान किस्ती पाइबा पई वार्षिक ई केवाईसी बाध्यतामूलक एथि पई pmkisan.gov.in पोर्टल रे निजर ई केवाईसी जांच करै नियंतु आपण निकटस्थ जनसेवा केंद्र को जाई एही काम करि परिबे किंबा पीएम किसान मोबाइल एप माध्यम रे निजे करि परिबे मन रखंतु जदि पोर्टल रे आपणक जमीर तथ्य नाही तेबे एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री माध्यम रे फार्मर आईडी करंतु किस्ती टंका पाइबा पई बैंक खाता रे आधार संयोग करंतु एवं एनपीसीआई मैपिंग फॉर्म दाखल करंतु आज ही यही प्रक्रिया संपूर्ण करंतु अधिक सूचना पाई कृषि समृद्धि हेल्पलाइन नंबर 1553333 किंबा निकटस्थ कृषि कार्यालय सह जोगाजोग करंतु।

0: 1, 2, 3, 4.
1: सुनो, चाय नियो। अरे चाय नियो मो।
2: देलो।
1: कौन एमिति गणी पकौछ जे?
2: अरे खबर कागजर चारि पृष्ठा उल्टेलेनी, स्थानीय खबर गोटे भी नै।
1: ओहो, अरे बाबा इति काहे की आम रेडियो।

0: इति प्रधानमन्त्री अग्रे अवदत् यत् सर्वकारस्य निरन्तरप्रयासः अस्ति यत् भारतस्य सामर्थ्यं विश्वस्य अन्यदेशेभ्यः अपि अवसराणां नूतनद्वाराणि उद्घाटयेत्। सः अवोचत् यत् सामर्थ्यं केवलम् अग्रे गमनस्य क्षमता नास्ति, अपि तु अन्येषां सशक्तीकरणस्य क्षमता वर्तते। श्रीमोदिना उक्तं यत् वर्तमाने युगे अङ्कीयशक्तिः अस्य रूपान्तरणस्य प्रमुखचालकरूपेण उदिता, या अस्य दृष्टिकोणस्य विस्तारे महतीं भूमिकां निर्वहति, यथ च भारते विपुलान् अवसरान् सृजति।
1: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं। करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं। 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं। हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है, और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
0: प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् यदा कदापि विश्वस्मै स्थिरस्तम्भस्य आवश्यकता भवति तदा भारतं स्वदायित्वम् अनुभूय साहाय्यहस्तं प्रसारयति। श्रीमोदिना सूचितं यत् अद्य भारते 2,000+ वैश्विकक्षमताकेन्द्राणि सन्ति, यानि सम्पूर्णविश्वस्य वाणिज्यिकसंस्थाभ्यः सेवाः प्रयच्छन्ति। प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् भारतं लोकतन्त्रस्य जननी अस्ति, यत्र शतसङ्ख्याधिकाः भाषाः, प्रायः 80,000 पञ्जीकृतानि समाचारपत्राणि प्रकाशनानि च, 1,000+ च उपग्रह दूरदर्शनवाहिन्यः सन्ति। श्रीमोदिना विशेषतया प्रतिपादितं यत् विगते दशके भारतेन 25 कोटि जनाः निर्धनरेखातः बहिः निष्कासिताः।
1: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो, और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: नवदिल्ल्यां बंगालोपत्यका बहुक्षेत्रीय प्राविधिक आर्थिक सहयोगोपक्रमस्य प्रथम गृहमंत्री सम्मेलनम् भारतस्य आतिथ्ये सम्पद्यते। इदम् ऐतिहासिकं सम्मेलनम् आतंकवादस्य, पारदेशीय संगठित अपराधानां, मादकद्रव्यतस्करजालस्य, मतान्धतायाः, मानवदुर्व्यापारस्य, अवैध वित्तीय प्रवाहाणाम् अथ च साइबर आह्वानानां सम्मुखीकरणाय सामूहिक संकल्पं दृढयति। अत्रावसरे भाषमाणः गृहमन्त्री अमितशाहः अवोचत् यत् बीमस्टेक संगठनं क्षेत्रीय

0: आकाशवाणी कटक प्रचार करुछु उदय भारत प्रयोजना विनय कुमार सामंतराय एवं उपस्थापना बाउरी बंधु स्वयं
1: आकाशवाणी भवानीपाटना समय वर्तमान संध्या 6:30 लोकगीत क्रम में प्रचार करुछु दंडनाच गीत परिवेषण करिसंती पद्मनाभ गौड़ एवं साथी शुणिपारे ए विज्ञापन पर
2: चासी भाई भौनी माने पीएम किसान किस्ती पाइबा पई वार्षिक ई केवाईसी बाध्यतामूलक एथि पई pmkisan.gov.in पोर्टल रे निजर ई केवाईसी जांच करै नियंतु आपण निकटस्थ जनसेवा केंद्र को जाई एही काम करि परिबे किंबा पीएम किसान मोबाइल एप माध्यम रे निजे करि परिबे मन रखंतु जदि पोर्टल रे आपणक जमीर तथ्य नाही तेबे एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री माध्यम रे फार्मर आईडी करंतु किस्ती टंका पाइबा पई बैंक खाता रे आधार संयोग करंतु एवं NPCI मैपिंग फॉर्म दाखल करंतु आज ही यही प्रक्रिया संपूर्ण करंतु अधिक सूचना पाई कृषि समृद्धि हेल्पलाइन नंबर 155333 किंबा निकटस्थ कृषि कार्यालय सह जोगाजोग करंतु
3: आपणकर 4800 रिवार्ड पॉइंट्स आज ही एक्सपायर हे जिवो एबे रिडीम करि नियंतु
4: अरे वाह मोर इत्ते पॉइंट्स केमिति आसला
5: बस इमथि पचारंतु व्हाई रिवार्ड पॉइंट रो नारे आसीथिबा कोनोसी अजणा लिंक रे क्लिक करबा पूर्वरु टिके भाबंतु गोटिए व्हाई आपणकु ठकेइरु बंचाई पारे सबुबेले पचारंतु WHY कहउछंती SBI रो कॅप्टन व्हाई आपणकर साइबर रक्षक।

0: देव अछंति वर बरालय वासी हर बालुंकेश्वर तांको नाम हे सभाजन केड़े सुंदर स्वभावन।
1: लोकगीत क्रमरे शुणुथिले शिल्पी पद्मनाभ गौड़ एवं साथी परिवेषण करिथिबा दंडनाच गीत कार्यक्रम शुणुचंती आकाशवाणी भवानीपाटणा केन्द्ररु। परवर्ती कार्यक्रम रिले करि प्रचार करुछु आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। शुणिपारिबे किछि क्षण मध्यरे।

एकाधिक प्रकल्पर उद्घाटन आउ आवास योजना हिताधिकारी मानको घर आवंटन कले मुख्यमंत्री दियाली उत्तरु व्यवसाय लेनदेन क्षेत्र ती लागू हेबा यूपीआई शुल्क नवरात्र तीन नंबर दिने श्रद्धा और भक्तिर सहित चली माँ चंद्रघंटा पूजा और महिला और बालिका मान लगी निर्भया पदक्षेप अधीनती संबलपुर जिला प्रशासन तरफ तैयार भिन्न भिन्न योजनार समीक्षा कले मुख्य शासन सचिव मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज भुवनेश्वर न बहुत प्रकल्प उद्घाटन और शिलान्यास करवार सहित आवास योजना ती घर आवंटन करिछन भुवनेश्वर घाटिकिया थाने नीलकंठेश्वर मुक्तेश्वर आवास योजनार लोकार्पण करिछन योजना ती गरीब लोकमान को 1608 घर दिया जाइछि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अर्बान बंधु योजनार भित्तिप्रस्तर स्थापना करिछन ई योजना ती सरकार सुलभ दाम ती लुक को भड़ा ती घर जुगे देबे पहला खेपे भुवनेश्वर न इथिर लागि 300 घर तैयार करा जिबा बोली निष्पत्ति हिची ओडिशा प्रसंगति प्रधानमंत्री आवास योजना अधीनती 2,00,000 नो एतका घर मंजूर हितबार बेले राज्य सरकार तरफ अंत्योदय गृह योजना जरिए पाखापाखि 5,00,000 घर जुगे दिया जिबा बोली मुख्यमंत्री सूचना दैछन क्रीड़ा भित्तिभूमिर विकास आउ जुआन पीढ़ी के खेलकूद लागि उन्नत सुविधा जुगे देबार उद्देश्य भिन्न भिन्न इलाका आउ विद्यालय परिसर न मोट 12 खेल पड़ियार विकास करा जाइछि ये आधुनिक क्रीड़ा प्रकल्प स्थानीय क्रीड़ाविद और युव प्रतिभा मानको उन्नति प्रशिक्षण सांगे निजर दक्षता प्रदर्शन लगी भल सुजोग जुगाई देबा बोली मुख्यमंत्री कहिछन कार्यक्रम ते गृह और नगर उन्नयन मंत्री डाक्टर कृष्णचंद्र महापात्र जोग दैथिले दियाली उत्तरु व्यावसायिक लेनदेन क्षेत्र ती निर्दिष्ट व्यक्ति और व्यवसायी आर्थिक कारबार भितरे यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू हेबा पार्वण ऋतु के नजर ती रखिकी निष्पत्ति निजी सामाजिक गणमाध्यम जरिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया MPCI तरफ कहुई MDR शुल्क खाली 2,000 टंका नो एतका कारबार उपरे 0.4% आउ 75,000 नो एतका कारबार उपरे सबुनो एतका 300 टंका लागू हेबा बोली नियमती व्यवस्था रही सारा देशे आउ राइजे शक्तिपीठ मानके माँ चंद्रघंटा विधि मुताबक पूजार्चना चली शारदीय नवरात्रि समियाती 9 दिन धरिकी माँ दुर्गा आउ तांकर 9 भिन्न भिन्न स्वरूप के विधि विधान सहित पूजा करबार परंपरा रही आज माँ कर 3 नंबर स्वरूप माँ चंद्रघंटा पूजा कर व्रतधारी मैंने निष्ठार सहित माँ को उपासना करुचन माँ कर मस्तक शोभा पाउथ्वार अर्धचंद्र घंटा आकृति होतीबानु माँ को चंद्रघंटा कहुएसी दशभुजा बाघ उपरे विराजमान हेसन माँ कर दिव्य स्वरूप शक्ति साहस निर्भीकता आउ शांतिर प्रतीकाय परंपरा अनुसारे माँ पार्वती भगवान शिव को बिहा हेबा ऋतु चंद्रघंटा रूप धारण करथिले बोली विश्वास रहिछे तांकर घंटानाद दुष्ट शक्ति मानकु दूर करसी आउ भक्त मानकु निर्भय प्रदान करसी महिला और बालिका मानक लगी सुरक्षित समावेशी आ भयमुक्त सहर गठन लक्ष्य ती निर्भया पदक्षेप अधीनती संबलपुर जिला प्रशासन तरफ तैयार भिन्न भिन्न योजनार समीक्षा लगी आज भुवनेश्वर लोकसेवा भवन मुख्य शासन सचिव अनुगणकर अध्यक्षता ती गोटे उच्चस्तरीय बैठक हो जाइए ई पदक्षेप अधीनती मोट 10 crore टंका आनुमानिक खर्चा ती 9 प्रमुख उद्यम प्रस्तावित होती शक्ति सारथी प्रतिक्रिया दृष्टि एसटॉप सहजात्रा निर्भया सदन साथी यात्रा सचेतनता बागे भिन्न भिन्न प्रस्तावित योजना जरिए महिला मानकर निरापद जा आस तुर्ती पुलिस सहाज आ महिला अनुकूल सार्वजनिक सुरक्षा उपरे जोर दिया जाइछि बैठक ती गृह विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव हेमंत शर्मा आ पुलिस महानिर्देशक विनय तोष मिश्र उपस्थित थिले संबलपुर जिलापाल सिद्धेश्वर बलिराम बंदर आवासी जरिए जोग देकरी प्रस्तावित योजना मानकर रूपरेख उपस्थापन करिथिले आपण माने खबर सुनुचन आकाशवाणी संबलपुर केन्द्रनु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन्ती 25 पूरा करिछन जनसेवा नु देशसेवा मंत्र के आधार करिकरी तांकर ई जयजात्रा जारी रहिछि सेवा आउ सुशासन रो ई दृष्टिकोण के नेकरी 2047 तक विकसित भारत गठन रो लक्ष्य हासिल दिगे सरकार लगायत काम करुछन समावेशी विकास आउ सामाजिक सशक्तिकरण जरिए ई चेष्टा जनजीवन्ती परिवर्तन आनिछि आमर ई खास श्रृंखलाती आज आमे जातीय शिक्षानीति 2020 बाब्दी तथ्य उपस्थापन करुछु केन्द्र सरकार जातीय शिक्षानीति 2020 लागू हेबार उतरु देशर शिक्षा क्षेत्र ती गोटे व्यापक परिवर्तन लागि राहा खुलिछे पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था ती परिवर्तन आनिकरी छात्र छात्री मानको ऐतका दक्षता भित्तिक आउ बहुमुखी शिक्षा देबार उपरे इति जोर दिया जाइछे मातृभाषा ती शिक्षा वृत्तिगत आउ दक्षता भित्तिक शिक्षा प्रजुक्ति विद्यार व्यवहार गवेषणा के प्रोत्साहन

0: समझ और चॉइस के हिसाब से उसे विकल्पों का मिलना, स्थान, वर्ग, क्षेत्र के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित न रहे, इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विजन ये है कि गांव, शहर, हर वर्ग में युवाओं को एक जैसा अवसर मिले।
1: प्राकृतिक विपर्यय समयति सचेतनता बढ़ावार उद्देश्य आज अंतर्जातीय विपर्यय नियंत्रण दिवस पालन करा जाउछि। विपर्यय बाबत समस्या के दूर करबार अवतार मुकाबला लागि 1999 मसियाति संयुक्त राष्ट्र महासभा तरफ पहला ई दिवस पालन करा जाइतिला। ई बछर ई दिवस रो वार्ता हेउछि परिवार नो प्रस्तुति आरंभ। विपर्यय परिचालन मूल लक्ष्य हेउछि विपद के चिन्हबार, नुकसान कमाबार आउ विपर्यय उत्तर खेप्ती जीवन धारण मान के स्वाभाविक करबार। ओडिशा बागीर विपर्यय प्रवण राज्य विपर्यय मुकाबला लागि आक्तुरा प्रस्तुति, आश्रयस्थली, उद्धार काम आउ लुक्कर भितरे सचेतनता सृष्टि उपरे खास जोर दियाजाउछि। विपद समयति प्रशासन सांगे स्वेच्छासेवी, उद्धारकारी दल आउ स्थानीय लुके मिसिकिरी काम करुछन्। राज्य सरकार सबु विपर्यय बेले शून्य मृताहत दिगे काम करिकिरि विश्वस्तरन गोटे रोल मॉडल स्थापन करिछन्। विपर्यय मुकाबला लागि ओडिशा राज्य विपर्यय परिचालना कर्तृपक्ष ओस्टेमा काम करुछि। सेंता उद्धार स्थानांतर आउ जरूरीकालीन मुकाबला लागि ओड्राफ दल काम करुछि। बिनबिन जिल्ला आउ ग्रामांचल न मॉकड्रिल जरिए निरापद स्थानांतर, प्राथमिक चिकित्सा आउ उद्धार काम बाबदे तालीम दिया जाउछि। भारतर निर्वाचन आयोग आउ राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारीकर निर्देश दि संबलपुर जिल्ला सारा भोटर तालिका थी ना पंजीकरण लागि गुटे खास अभियान मूल करा जाइछि। स्वतंत्र निविड़ संशोधन प्रक्रिया उत्तर जिल्लार केनसीबिल योग्य नागरिक, बात पड़ा भोटर आउ नुआ जुबो भोटर जेन्ता सेमानकर गणतांत्रिक अधिकार नु वंचित नाई हुअन ताके सुनिश्चित करबाटा ए अभियान रो मूल उद्देश्य है। इथिलागि आज संबलपुर अतिरिक्त जिल्लापाल सुधांशु भोईंकर अध्यक्षताती सबु स्वीकृति प्राप्त राजनैतिक दलमानकर प्रतिनिधिमानकु नेइकरि गुटे जरूरी बैठक हो जाइछि। बैठकर निष्पत्ति अनुसार जिलार सबु मतदान केन्द्र बीएलओ माने इहादे चूड़ांत भोटर तालिका सहित एसआईआर आघर भोटर तालिका के तुलना करबे आ बात पड़ितबार योग्य भोटर मानकर गुटे स्वतंत्र तालिका तैयार करबे। सुवर्णपुर ठारे विद्यालय स्तर पहला राज्यस्तरीय 14 बछर नु कम बालक फुटबल चैंपियनशिप आज उद्घाटित हिछि। गांधी स्टेडियम खेल पड़िया न जिल्लापाल देवाशीष सिंहकर सभापतित्व थी हितबार उद्घाटनी समारोह ती विधायक रघुनाथ जगदला आउ विशिष्ट धाविका दूती चांद जोग दीथिले। आइबा 16 तारीख तक तीनटा खेल पड़िया न हेबार के थिबार विद्यालय समूह जूनियर फुटबल चैंपियनशिप प्रतियोगिता थी ओडिशार मोट 32 शिक्षा जिला नु जूनियर बालक दल भाग नेछन। पाणीपाक दक्षिण आंडामान सागर पासर इलाकान होइतबार घूर्णिवलय लघुचापती बदलीचे। इतार प्रभावती राज्यर भिन्न भिन्न जिलान हालकान मध्यम धरणर वर्षार हेबार संभावना रहीचे। आइबा 24 घंटा भितरे राज्यर 17 जिलान चड़क मारिकरी वर्षा हेबा बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ सतर्क सूचना जारी करा जाइचे। शेषे मुखिया खबर फेर गए। भुवनेश्वर न एकाधिक प्रकल्प उद्घाटन आउ आवास योजना हिताधिकारी मानको घर आवंटन कले मुख्यमंत्री। दियाली उत्तर व्यवसाय लेनदेन क्षेत्र ती लागू हेबा यूपीआई शुल्क। नवरात्र तीन नंबर दिने श्रद्धा और भक्ति सहित चली माँ चंद्रघंटाकर पूजा। और महिला और बालिका मान लगे निर्भया पदक्षेप अधीनते संबलपुर जिला प्रशासन तरफ तैयार भिन्न भिन्न योजनार समीक्षा कले मुख्य शासन सचिव। आज आंचलिक खबर इनु शेष है। जुहार।

0: योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
1: प्रधानमंत्री कहिछन्ति 2014 मसीहारु भारतर स्टार्टअप इकोसिस्टम उल्लेखनीय भावे संप्रसारित होइछि एवं स्टार्टअप संख्या 250,000 अतिक्रम करिछि। रांचीस्थित सूचना और प्रजुक्ति भारतीय प्रतिष्ठान ट्रिपल आईटी छात्र मृत्यु तदंत पाई शिक्षा मंत्रालय पक्षरु एक तीनि जनिया कमिटी गठन करा जायछि। दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपसर डायरेक्टर प्रोफेसर रजनी आबिंग अध्यक्षता में गठित कमिटी छात्र मृत्यु घटनार अनुसंधान करिव। कमिटी कैंपस रे निर्देशावली पालन कर विशेषकर सेठे मौलिक सुविधा शिक्षानुष्ठान परामर्श सहयोग और अभियोग समाधान व्यवस्था या त्रुटि संपर्क में अनुध्यान कर। भविष्य में यह दुर्घटना जपरि पुनरावृत्ति न हुए से संपर्क में कमिटी आवश्यक परामर्श प्रदान कर। कानाडार वैदेशिक मंत्री अनिता आनंद आज दुईदिनिया भारत गस्तरे आसुछन्ति। नुआदिल्ली से पहुंचा पूर्व संवाद सरबराह संस्था सह आलोचना काल में भारत अवस्थापित कानाडार उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटर वैदेशिक मंत्री डॉ एस जयशंकर कानाडा प्रतिपक्ष आलोचना संपर्क में सूचना प्रदान कर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और तांको कानाडा प्रतिपक्ष मार्क कार्ने मध्यरे रहितबा दृढ़ बुझामणा संपर्क में उल्लेख कर उच्चायुक्त कुटर कहते उभय देश मध्यरे संपर्क त्वरान्वित हो 2030 सुधा द्विपाक्षिक वाणिज्य कारबार को द्विगुणित करने को लक्ष्य रखी से कहते आसंता वर्ष उभय देश मध्यरे कूटनैतिक संपर्क 80 वर्ष पूरण होगा। केन्द्र प्रतिरक्षा राष्ट्रमंत्री संजय सेठ आसंता गुरुवार दिन गुवाहाटी में जातीय समर शिक्षार्थी बाहिनी एनसीसी रो स्वतंत्र मिलित राज्य प्रतिनिधि और अतिरिक्त महानिर्देशक सम्मेलन 2026 रे जोगदेबे। सम्मेलन में एनसीसी रो महानिर्देशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेन्द्र भाट जोगदे उत्तर पूर्वांचल रे एनसीसी रे रहितबा समस्या संपर्क में आलोकपात करिवे। एही सम्मेलन में प्रतिरक्षा मंत्रालय एनसीसी एवं राज्य सरकार वरिष्ठ प्रतिनिधि अंशग्रहण करिवे। एनसीसी रे शिक्षार्थी कल्याण पांठि प्रशिक्षण और आनुष्ठानिक सुदृढ़ता एवं प्रशासनिक आह्वान को किपर आहरी सुसंगत कर से संपर्क में सम्मेलन में आलोचना संवाद शुणुंट आकाशवाणी। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय व्यापार राष्ट्रमंत्री डॉ एल मुरुगान पदवीर इस्तफा प्रदान कर। राज्यसभा सदस्यता पदर से इस्तफा दे जमापड़ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखिता इस्तफा पत्र में डॉ मुरुगान श्रमिकर सतान भाव आरंभ होता जीवन केन्द्र मंत्रिपरिषद सदस्य भाव दायित्व निर्वाह करवा एक सौभाग्य वर्णना कर। दलय कार्य नियोजित होगा से इच्छुक इस्तफा पत्र में सूचना दे। 2029 लोकसभा निर्वाचन पूर्व तमिलनाडु में बीजेपी को मजबूत करने उत्सर्गीकृत भाव कार्य कर मुरुगान। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सार्वजनीन जीवन में 25 वर्ष पूरण कर। जनसेवारु देशसेवा मंत्र को आधार कर जयजात्रा जारी रही। सेवा और सुशासन दृष्टिकोण को नहीं 2047 सुधा विकसित भारत गठन लक्ष्य हासिल दिगरे सरकार निरंतर कार्य कर। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण मध्यम यही प्रयास जनजीवन में परिवर्तन आनी। आमर एक विशेष श्रृंखल आज आम आपण जीएसटी परिषद पक्ष ग्रहण कर संस्कारमूलक पदक्षेपगुड़ी सूचना प्रदान करुछु। भारतीय टिकस संस्कार यात्रा 2017 जुलाई पहला आरंभ कर जीएसटी एक उल्लेखनीय माइलखुंट। केन्द्रीय और राज्यर विभिन्न टिकस को गोटे व्यवस्था मध्य एकीकृत कर एक देश एक टिकस व्यवस्था को देशव्यापी लागू कर। जीएसटी परिषद करदाता अनुकूल व्यवस्था मध्यम सहज और सुविधा व्यवस्था अपणवा को प्रस्ताव देता। गत वर्ष कर आगामी पीढ़ी जीएसटी संस्कार यह आहरी सरल कर। पूर्व 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत चारि स्तर विशिष्ट टेकस झांचा को परिवर्तन कर 5 और 18% दुईट स्तर में सीमित रखा। आज नुआदिल्ली ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम रे उद्बोधन दे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहते जीएसटी व्यवस्था द्वारा सरकार जटिल टिकस व्यवस्था को सरलीकृत कर।
0: जीएसटी के जरिए हमने टैक्सेस के एक कॉम्प्लेक्स वेब को नेशनल मार्केट में बदला है। हमने इंसॉल्वेंसी लॉ बनाया है। 29 लेबर कोड्स अब 4 सिंपल कोड्स में सिमट चुके हैं। बिजनेस से जुड़े सैकड़ों छोटी मोटी गलतियों को डिक्रिमिनलाइज किया गया है। और अब यहां रुके नहीं है भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा।

0: अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
1: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
2: ये बैठक कौन खाली पड़ी कहार देखा दर्शन ना पिलाटा कही आसो बोली आम दाम कहीं एपर्त आसनी हौ के आसु आसु केते काम ता दिया जाय छी कोन कला के जानी
3: बाकी सुबा
2: हां दामो
3: दी
2: हां हां आसी
3: जुहारे जुहारे
2: हां जुहारे जुहारे दामो तमको जो दायित्व दिया जायथिला से काम सब सरी छी
3: अप्पा पूरा जोरदार चली छी
2: हां
3: पूरा पारवण पई सफा सफी हमें चले छु
2: हेले नवदिनात्मक पूजा चली छी मां करो ता सहित तुमे परिष्कार परिछन गा कर देई छ ता सहित जोटी मां कर प्रतिमूर्ति हमर हेई छी सेठी भी परिष्कार रखी छ ता सहित भलो लाइट सजेई छ लिचू लाइट मु देखि के आसी
3: छी की मारु छी
2: हां
3: एतर पूजा पूरा जमिबो अपा
2: हां पूजा जमिबो ता सहित सब बेले लक्ष्य रखिथिबो परिष्कार परिछन जदि आमे रखुतुबा ताहले आमे ठीक ठाक पूजा कले बेले जानिबा काई ना समस्ते आसीबे ता सहित खाइया पिबा दुकान ला ताकु सब खाइबे जेंति एठी सेठी किछि न पड़े जदि आमे स्वच्छता को बजाई रखिबा ताहले आमे सुस्थ रे बंचिबा
3: आज्ञा अपा ठीक कहिले
2: दाम
3: आज्ञा
2: गोटे जिनिष आनीथिली तम पई एठी रहिला
3: ई अपा को देखिले तो पाटीरु नाळ गडी आसिलानी
2: कोन कहिला से
3: कोन हळदिया हळदिया नालिया नेलिया देखा जाउछि कोन कोन सब पके के आनिछ को मक्का की
2: मक्का रे काकुडी पड़ीछि गाजर पड़ीछि ता सहित कंचा लंका कागिज लेबू पके कोन बहु हमर करितला मक्का चाट तम पई रहिला तमे खाइबो एई मक्का चास तुमे करिवो के नाही कुह
3: हमर एटी हेई परिवो
2: आउ हमर चासी भाई माने करूछदि ना आउ
3: दि पैसा बाहरिबो जेतु
2: आउ भलो दि पैसा बाहर बर्तमान बा मकार चाहिदा बहुत अच्छी कहीं बाहर व्रत घर जो भोजी भात होना मका है सीझा मका
3: है
2: मीठा मका सब कर सहित बर्तमान जो छणा छणी सब मका पाउडर पकाउं
3: कौन पाउडर
2: हाँ मकार चाहिदा बहुत अच्छी जदि आम मका चाष प्रति टे मन बड़े ताल केड़े सुंदर हूँ कहल
3: अपा मु सुनीतिली दक्षिण ओडिसा नवरंगपुर जिल्ला रे भलो मक्का चासो हुए
2: हां ताकु पा कहा जाय मक्का क्षेत्र कहा जाय हमर नवरंगपुर जिल्ला को
3: मक्का क्षेत्र
2: हां दामो
3: आज्ञा
2: हमर एई नवरंगपुर जिल्ला आ दक्षिण ओडिसा रे सर्वाधिक मक्का उत्पादनकारी जिल्ला ता भीतर कोन कहलो कोरापुट रायगडा कोलाहांडी अंचल रे मध्ये मक्का चास करा जाय तार चास समय होउची खरीफ जेतले चास होउची जून जुलाई मास रे बिहन बुणा जाय पुनी रबी ऋतु अछि एई हम अक्टूबर नवंबर मास रे चास करा जाय जदि पानी रो सुविधा अछि ताले एई समय रे चास करि परिबा
3: पानी सुविधा हे जीवो
2: हां
3: आमे ताले करिबा
2: हां
3: आउ किछि भाई माने अछंती ताकु एकजुट करी आमे मिसिक जदि करिबा ताहले निहाती भलो लाभ हबो
2: हेले दामो मक्का चाष जमी नवरंगपुर अधिक होउची आमे जदि एपटे मक्का चाष टिके भलो भाबरे करंते आ मक्का भलो पाते ताले आम पाखरे दी पैसा रहंता आउ कोन
3: निहाति ना आउ अच्छा अप्पा
2: हां
3: दक्षिण ओडिसा एटा होउची हमर उपकूलवर्ती ओडिसा
2: हां
3: सेपटे मक्का चाष कले भलो लाभ होउची उत्पादन होउची एठी कले जलवायु को सुहाइबो
2: हां हबनी काई सेठिकार जलवायु होउची उर्वर दोरसा ओ भलो जल निष्कासन व्यवस्था थिबा माटी मक्का चाष पई पूरा सर्वोत्तम जदि आमे एथिरे मक्का चाष करंते ताले लाभ दिता हुंता आउ कोन
3: आमे ताले ट्राई करिबा
2: हां हेले दामो भलो मंद दीपद कथा हेले ता सहित मक्का चाष करिया पई मन बळेले संध्या बेळ बैठक घर बसिकी पल्ली गीत टे शुणा तापर कथा हबा
3: हो।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हा, हा।

0: आकाशवाणी विज्ञापन कम खर्च सारा राज्य खेले गुंजरण।
1: शारदीय दुर्गा पूजा उपलक्ष्य नाटकर विशेष प्रसारण कार्यक्रम प्रसारण समय राति 10:00 एवं दिन 3:30। यह क्रम आगामी 16 तारीख शुक्रवार दिन शुणे नाटक देवी एवं दानव रचना गोपाल छोटराय प्रयोजना मनोज रंजन दास प्रसारण समय राति 10:00। 17 तारीख शनिवार दिन शुणे गीतिनाट्य महिषासुरबद्ध रचना गणकवि वैष्णवपाणी प्रयोजना रमापद नंद संगीत रखाल चंद्र महांती। 18 तारीख रविवार दिन शुणे नाटक दशभुजा रचना कविचंद्र कालीचरण पट्टनायक बेतार नाट्य रूपातर मनोरंजन दास प्रयोजना नरसिंह महापात्र शुणिपारे दिन 3:30। ये नाटक संपर्कित कार्यक्रम सूचना आकाशवाणी भवानीपाटना। परवर्ती कार्यक्रम रिले कर प्रचार करुचु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र।

0: नमस्कार श्रोताओं, रात के 8:30 बज चुके हैं और ये समय है आकाशवाणी की तरंगों पर खेल मैदानों के रोमांच और ताजा लाइव अपडेट्स से सजे आपके पसंदीदा खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के अंक में मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त जया भारती और हमेशा की तरह आज स्टूडियो में आज के इन ताजा अपडेट्स पर मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है मेरे सहयोगी सिद्धार्थ।
1: धन्यवाद जया, और श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। आज का ये मंगलवार खेल प्रेमियों के लिए बेहद व्यस्त और हैरान करने वाले नतीजों से भरा रहा है। एक तरफ जहां डेनमार्क के कोर्ट से इस समय हमारे पास बेहद ताजा और लाइव खबरें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ दो बड़ी राष्ट्रीय टीमों का ऐलान हुआ है।
0: बिल्कुल सही कहा सिद्धार्थ। तो श्रोताओं, सभी खबरों पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर इस वक्त की प्रमुख खेल सुर्खियों पर।
1: डेनमार्क ओपन सुपर 750 में भारत को दो बड़े झटके और दो राहत। चाउ टियन चेन के हाथों लक्ष्य सेन की हार और पीवी सिंधु भी प्रतियोगिता से बाहर, लेकिन किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा ने दर्ज की शानदार जीत।
0: एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा, कप्तान हरमनप्रीत सिंह के हाथों में रहेगी टीम की कमान।
1: नागोया पैरा एशियन गेम्स के लिए खेल मंत्रालय ने दी 166 एथलीटों के दल को हरी झंडी। प्रमोद भगत और भाविना पटेल होंगे ध्वजवाहक।
0: रणजी ट्रॉफी 2026 के पहले दौर के मुकाबले समाप्त हुए। मुंबई और उत्तर प्रदेश ने एक पारी के अंतर से ऐतिहासिक जीत दर्ज की।
1: भारतीय कप्तान शुभमन गिल को वेस्टइंडीज के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए रिकॉर्ड पांचवी बार ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है।
0: और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला कल हैदराबाद में। श्रोताओं, सबसे पहले बात डेनमार्क ओपन की, इसके लिए रुख करते हैं ओंडेस शहर का, जहां आज से डेनमार्क ओपन सुपर 750 के पहले दौर के मुकाबले खेले जा रहे हैं। सिद्धार्थ, कोर्ट से इस समय हमारे पास जो खबरें आ रही है उसमें थोड़ी निराशा और खुशी दोनों शामिल है।
1: बिल्कुल जी, पहले ही दौर में भारतीय प्रशंसकों के लिए एक बड़ा झटका लगा है। हमारे स्टार शटलर लक्ष्य सेन पुरुषों के सिंगल्स के बेहद कड़े और 3 सेटों तक चले मुकाबले में चीनी ताइपे के दिग्गज खिलाड़ी चाउ टियन चेन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। ताउ टियन चेन ने लक्ष्य को 21-18, 13-21 और 21-15 से शिकस्त दी।
0: उफ, लक्ष्य सेन का पहले ही दौर में बाहर होना मेडल की रेस के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा झटका है, लेकिन सिद्धार्थ, किदांबी श्रीकांत की जीत ने लक्ष्य की हार के गम को तुरंत भुला दिया। श्रीकांत ने आज कमाल का संयम दिखाते हुए फ्रांस

0: के अर्नॉड मर्कले को सीधे सेटों में 22-20 और 21-19 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है।
1: बिल्कुल जया, इसके अलावा महिला सिंगल्स में हमारी 17 वर्षीय युवा सनसनी तन्वी शर्मा ने भी जापान की नात्सुकी निदाइरा को 2-1 से हराकर एक बड़ा उलट फेर किया है। हालांकि पीवी सिंधु जर्मनी की वाइली से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई हैं। सिंधु को 21-13, 23-25, 19-21 से हार का सामना करना पड़ा है।
0: बिल्कुल सिद्धार्थ, अगर हम देखें तो महिला सिंगल्स और पुरुष सिंगल्स दोनों में एक ही जैसा हाल रहा है, जहां एक लक्ष्य सेन का बाहर होना बड़ा झटका रहा, इधर महिला सिंगल्स में सिंधु का बाहर होना हमारे लिए बड़ा झटका रहा, लेकिन दोनों ही जगहों पर इस गम को भुला दिया है। एक जगह किदांबी श्रीकांत ने तो दूसरी तरह तन्वी शर्मा ने।
1: बिल्कुल, सिंधु को लेकर भी काफी उम्मीदें थी, लेकिन शुरुआती मैच में जो उनका प्रदर्शन था वो ठीक नहीं रहा और वो हार कर बाहर हो गई।
0: खैर, अब कल देखते हैं कि श्रीकांत और शर्मा, तन्वी शर्मा क्या रोमांचक मुकाबला दिखाती है हमें। तो चलिए, बैडमिंटन के इस लाइव रोमांस के बाद अब रुख करते हैं राष्ट्रीय गौरव हॉकी की तरफ, जहां हॉकी इंडिया ने पंजाब में होने वाली पुरुष एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 के लिए अपनी 18 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। सिद्धार्थ, ये टूर्नामेंट 27 अक्टूबर से पंजाब के जालंधर और मोहाली में खेला जा रहा है, तो आज घोषित हुई इस टीम की मुख्य बातें क्या लग रही हैं आपको?
1: जी हाँ जया, हॉकी प्रेमियों के लिए ये बेहद शानदार टीम चुनी गई है। हाल ही में भारत को ऐतिहासिक गोल्ड मेडल लाने वाले हमारे सरपंच साहब यानी कप्तान हरमनप्रीत सिंह ही इस 18 सदस्यीय टीम की कप्तानी संभालेंगे। वहीं विवेक सागर प्रसाद को टीम का उप कप्तान बनाया गया है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि अनुभवी गोलकीपर किशन बहादुर पाठक की टीम में शानदार वापसी हुई है, जो हमारी सुरक्षा दीवार को और मजबूत करेंगे। जया,
0: बिल्कुल सिद्धार्थ, लेकिन जब भी किसी टीम की घोषणा होती है ना, तो हमेशा एक सवाल उभरता है कि क्या टीम में पुराने कोर खिलाड़ियों को बनाए रखा गया है या फिर कुछ नए चेहरों को भी मौका मिला है। तो ऐसे में अपने श्रोताओं को बता दूं कि कोच क्रेग फुल्टन ने निरंतरता पर भरोसा जताया है, लेकिन युवा डिफेंडर अमदीप लाकड़ा और मिडफील्डर आदित्य लालगे को सीनियर टीम में खुद को साबित करने का एक और बेहतरीन मौका दिया गया है। भारत इस टूर्नामेंट में बतौर डिफेंडिंग चैंपियन और 5 बार के विजेता के रूप में उतरेगा। भारत अपना पहला मैच 27 अक्टूबर को जालंधर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा।
1: बिल्कुल जय, और खास बात यह है कि एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के जरिए पंजाब में 2 दशक के बाद अंतरराष्ट्रीय हॉकी की वापसी हो रही है। इसके मुकाबले जालंधर और मोहाली में खेले जाएंगे, और पंजाब शुरू से हॉकी को लेकर आप देखते हैं कि किस तरीके से पंजाब में हॉकी का क्रेज रहा है, कितनी लोकप्रिय है, तो ये एक बहुत अच्छी खबर है हमारे हॉकी प्रेमियों के लिए। तो इसका सबको इंतजार रहेगा, और जिस तरह से हमारी टीम ने अभी एशियन गेम्स में प्रदर्शन किया है, तो बहुत ज्यादा शायद इसीलिए टीम में परिवर्तन नहीं किया गया है, टीम पूरे फॉर्म में है।
0: बिल्कुल।
1: और अब रुक करते हैं आज की एक और बड़ी घोषणा का। 18 अक्टूबर से जापान के नागोया शहर में 5वें पैरा एशियन गेम्स शुरू होने जा रहे हैं, जिसके लिए खेल मंत्रालय ने आज भारतीय दल को मंजूरी दे दी है। जया
0: जी सिद्धार्थ, खेल मंत्रालय ने आज आधिकारिक तौर पर 166 एथलीटों के भारतीय दल को हरी झंडी दे दी है, जो 10 अलग अलग खेलों में भारत की चुनौती पेश करेंगे। और गर्व की बात यह है कि उद्घाटन समारोह में टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल लिस्ट यानी कि गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रमोद भगत और टेबल टेनिस में रजत पदक विजेता भावीना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे, जो परेड ऑफ नेशंस में तिरंगे को थामेंगे।
1: बिल्कुल जय, ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाले पल होते हैं जब आप अपने देश को रिप्रेजेंट करते हो, उसका प्रतिनिधित्व करते हो किसी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में, तो ये खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा सपना होता है। और ऐसे में हम अपने जितने भी पैरा एथलीट्स हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और इसके साथ ही ये तो बात हो गई, और अब रुक कर लेते हैं निशानेबाजी की ओर। नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में चल रहे नेशनल शूटिंग ट्रायल्स के आज अंतिम दौर के मुकाबले समाप्त हो गए हैं, और रेंज से हमारे निशानेबाजों को लेकर भी ताजा अपडेट जया कुछ आई है।
0: बिल्कुल सिद्धार्थ, निशानेबाजी रेंज से आज भारत के शीर्ष शूटर्स ने अपनी फॉर्म का लोहा मनवाया है। पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में हरियाणा के अनीश भानवाला ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ट्रायल्स में पहला स्थान हासिल किया है। ओलंपिक स्टार मनु भाकर की स्पर्धा के भी परिणाम है। दरअसल महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने अपना दबदबा पूरी तरह कायम रखा है और सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। इन ट्रायल्स के परिणाम आगामी अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप के लिए भारतीय टीम का

0: आधार तय करेंगे।
1: बिल्कुल जया, क्योंकि हमारी जो निशानेबाजों ने जिस तरह का प्रदर्शन अभी किया है हाल में, और हमेशा से वो पदक के बड़े दावेदार रहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद हम अब रुख कर लेते हैं, एक बहुत अच्छी खबर आईसीसी से आ रही है। भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को महिला एशिया कप और एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन और महत्वपूर्ण मैचों में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है।
0: शेफाली ने दूसरी बार प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। 22 वर्षीय शेफाली को पहली बार पिछले साल नवंबर में ये सफलता मिली थी। उन्होंने घरेलू मैदान पर आयोजित आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महिला एशिया कप में भारत की जीत में शेफाली वर्मा ने अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए थे। आईसीसी के अनुसार शुभमन गिल ने भारत के अभिषेक शर्मा और जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा को पछाड़ते हुए ये पुरस्कार जीता। गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत के पहले दो वनडे इंटरनेशनल मैचों में 33 रन बनाए, जिसमें पहले मैच में शतक और दूसरे में नाबाद दोहरा शतक शामिल था। जनवरी 2023, सितंबर 2023, फरवरी 2025 और जुलाई 2025 में पुरस्कार जीतने के बाद ये गिल का पांचवा आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार है, जिसे वे सबसे अधिक पुरस्कार जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी के रूप में अपना रिकॉर्ड और मजबूत कर चुके हैं। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: जी हाँ जया, जो आप आईसीसी जब प्लेयर ऑफ द मंथ चुने जाते हो तो पूरी दुनिया में इसकी गूंज होती है, और इनफैक्ट देश के लिए भी ये बहुत ही गर्व की बात होती है।
2: बिल्कुल, जहाँ एक तरफ शेफाली वर्मा ने ये उपलब्धि हासिल की है, वहीं पे शुभमन गिल भारतीय कप्तान को आईसीसी प्लेयर पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अब जब क्रिकेट की बात हो रही है तो क्यों ना हम घरेलू क्रिकेट का भी रुख कर लें और क्रिकेट के महाकुंभ यानी रणजी ट्रॉफी की तरफ रुख करते हैं। सिद्धार्थ, मुंबई और उत्तर प्रदेश ने तो आज एक तरफा जीत दर्ज की है।
1: जी हाँ, और जिस तरह से मुंबई उत्तर प्रदेश ने आज प्रदर्शन किया है, बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई ने चंडीगढ़ को एक पारी और 155 रनों के विशाल अंतर से रौंदा। वहीं उत्तर प्रदेश की टीम ने भी बिहार को एक पारी और 267 रनों के रिकॉर्ड अंतर से शिकस्त देकर पूरे अंक हासिल कर लिए हैं। दिल्ली और बंगाल के मैच में भी आज आकाशदीप का जलवा रहा, हालांकि यश ढुल जया चोट के कारण थोड़ा रिटायर्ड हर्ट हो गए, तो उनको थोड़ी सी निराशा हुई।
2: बिल्कुल, और जब हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम ये कुछ और भी जानकारी देंगे, लेकिन थोड़ी देर में देंगे इसके बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ इस बेहतरीन और विस्तृत चर्चा के लिए। तो खेल प्रेमियों, आज डेनमार्क ओपन के उतार चढ़ाव, पुरुष हॉकी और पैरा एशियन गेम्स टीमों की घोषणा से लेकर रणजी ट्रॉफी के अंत तक खेल जगत की हर हलचल पर हमने आपसे बात की, और भले ही लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु की हार की निराशा हमारे हिस्से आई हो, लेकिन जैसा कि खेल की दुनिया में कहा जाता है कि जीत और हार तो दांव की बात है, असली खिलाड़ी वो है जो अंत तक हार ना माने।
1: क्या बात है जय, आपने तो बहुत ही मोटिवेट लाइन बोली है, क्योंकि जब स्पोर्ट्स की बात होती है तो जीत और हार का सिलसिला हमेशा बना रहता है, लेकिन हार कर जो जीतता है उसे ही बाजीगर कहते हैं।
2: बिल्कुल, और हम अभी कह रहे थे ना कि क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, इस पर और भी कुछ जानकारी देंगे, तो बता दें कि इन आज के इन रोमांचक नतीजों के बाद अब वक्त हो चला है कल यानी 14 अक्टूबर के सुपर वेंसडे शेड्यूल पर बारीक नजर डालने का। जाने से पहले नोट करिए कल के जो मुख्य आकर्षण है। कल डेनमार्क ओपन के दूसरे दौर के बड़े मुकाबले खेले आएंगे, जहां किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिस पर हमारी नजरें लगातार बनी रहेंगी।
1: बिल्कुल, इसके लिए आपको स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम पे लगातार आपको ट्यून इन करना होगा। और जया, इसके अलावा कल का सबसे बड़ा आकर्षण तो हैदराबाद के मैदान पर होने वाला भारत वेस्टइंडीज का चौथा T20 मुकाबला है।
2: बिल्कुल सिद्धार्थ, और अभी थोड़ी देर पहले मैं इसी की बात कर रही थी, कल शाम 7 बजे हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला जाएगा। 5 मैचों की इस रोमांचक श्रृंखला में यह मैच बेहद निर्णायक मोड़ पर है। हैदराबाद की यह पिच हमेशा ही रनों की बरसात के लिए जानी जाती है, और ऐसे में हमारे सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और कप्तान की कप्तानी में भारतीय युवा ब्रिगेड वेस्टइंडीज के कैरेबियाई पावर हिटर्स के खिलाफ एक बड़ा स्कोर खड़ा करने या बड़े लक्ष्य को हासिल करने के इरादे से उतरेगी। संजू सैमसन और कुलदीप यादव की जो फिरकी पर भी हम सभी फैंस की निगाहें टिकी होंगी।
1: बिल्कुल जया, हैदराबाद का जो मैदान है वो बल्लेबाजी के लिए

0: शानदार है। भारत ने इस मैदान पर आखिरी T20 मैच 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था, जहां भारत ने 279 रन बनाए थे। ऐसे में शिवम दुबे को प्रिंस यादव की जगह शामिल किया जा सकता है। भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और हिट कोच गौतम गंभीर की निगाहें इस समय प्लेइंग 11 पर होंगी, क्योंकि जहां वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि श्रृंखला जो है वो इसी मैच से डिसाइड होने वाली है।
1: बिल्कुल, और कल दिल्ली के मैदान पर फुटबॉल का भी तो एक बड़ा मुकाबला होना है ना।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा जाए। घरेलू स्तर पर फुटबॉल प्रेमियों के लिए कल इंडियन सुपर लीग यानी ISL में एक बेहद कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कल शाम 7 बजे पंजाब FC का सामना ओडिशा FC से होगा। दोनों ही टीमें इस समय अंक तालिका में शीर्ष 4 में जगह बनाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रही हैं।
1: बिल्कुल, यानी कि कल शाम 7 बजे एक तरफ क्रिकेट का बल्ला गरजेगा तो दूसरी तरफ फुटबॉल की किक होगी और बैडमिंटन के मैच तो देखने को मिलेंगे ही। हालांकि आज कुछ निराश करने वाली खबरें हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि कल कुछ सकारात्मक खबर जरूर आए। तो खेल का रोमांच कल चरम पर होने वाला है। श्रोताओं, अपने खिलाड़ियों का हौसला बनाते रहिए, क्योंकि जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि जब आप और हम मिलकर उनका हौसला बढ़ाएंगे तभी तो हमारा भारत जीतेगा
0: और हम बनेंगे विश्व चैंपियन।
1: बिल्कुल, तो श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स स्कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल मैदान की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव में स्पोर्ट्स स्कैन की ईमेल ID sportsscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इंकार से ये तथ्य नहीं बदलेगा। व्यक्ति से व्यापारी चुनिंदा लेनदेन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की तेजी, सेंसेक्स 73,034 पर हुआ बंद। और आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच आज सौहार्दपूर्ण और सार्थक बातचीत हुई। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
3: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
2: प्रधानमंत्री ने भारत में ब्लूमबर्ग के 30 वर्ष पूरे होने पर उसे बधाई दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी केंद्रीय बजट की तैयारियों के दौरान सरकार दीर्घकालिक

0: पूंजीगत लाभ कर हटाने के सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार है। श्रीमती सीतारामन ने आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम के दौरान अपने संबोधन में ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज कहा कि बिम्स्टेक देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस क्षेत्र का कोई भी हिस्सा आतंकवादी नेटवर्क को पनाह लेने, सदस्य बनाने, ट्रेनिंग लेने, फंड जुटाने या पड़ोसी देशों के खिलाफ गतिविधियां करने का अवसर न दे। नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृहमंत्रियों की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। गृहमंत्री ने बिम्स्टेक देशों के बीच सहयोग के 5 अहम क्षेत्रों पर बल दिया, जिनमें ड्रग्स पर नियंत्रण, आतंकवाद रोधी और कानूनी सहयोग, भागे हुए अपराधियों की वापसी, साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की जांच तथा संस्थागत सहयोग और क्षमता निर्माण शामिल हैं। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में डॉ मुरुगन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का सफर उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है।
1: आई वॉन्ट स्ट्रेंथन माई पार्टी टू तमिलनाडु।
2: मैं तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत करना चाहता हूँ और 2029 के चुनाव की तैयारी के लिए जमीन तैयार करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ने हमेशा तमिल गौरव को वैश्विक स्तर पर पहुँचाया है। मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि मुझे मंत्री पद से मुक्त कर तमिलनाडु भेजा जाए ताकि मैं वहाँ पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर सकूँ।
1: टू स्ट्रेंथन द पार्टी।
0: डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि मंत्रिपरिषद में पिछले 5 वर्षों के दौरान उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के धैर्य, करुणा और असाधारण समर्पण को करीब से देखने का अवसर मिला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इंकार इस स्थापित तथ्य को बदल नहीं सकता है।
2: लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। ये कार्य लद्दाख प्रशासन और स्थानीय पक्षों के परामर्श से किया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि इन स्थानों को आधिकारिक मानचित्र में दर्ज करने का उद्देश्य उनकी सटीक पहचान सुनिश्चित करना और आम लोगों में उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हावलीचेक से मुलाकात की। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चेक गणराज्य के बीच साझेदारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है।
3: भारत और चेक गणराज्य के बीच आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता पर आधारित गहरे और पुराने संबंध हैं। बदलते समय के साथ भी हमारी ये दोस्ती कायम रही है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की भी अपार संभावनाएं हैं।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है, वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है।
2: जो भी समाज नशे की गिरफ्त में आता है, वहाँ एक पूरी पीढ़ी के बर्बाद होने का खतरा पैदा हो जाता है। अगर हम अपने समाज को नशे से मुक्त करने में सफल नहीं होते, तो विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में हमारे सामने एक बड़ी चुनौती होगी।
1: प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मास्टर प्लान की शुरुआत वर्ष

0: 2021 में आज ही के दिन देश के बुनियादी ढांचे के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से की गई थी।
1: पिछले 5 वर्षों में पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक एकीकृत डिजिटल नियोजन मंच से विकसित होकर एक व्यापक भूस्थानिक नियोजन प्रणाली बन गया है, जो अवसंरचना, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के विकास में सहयोग कर रहा है। इसने जीआईएस आधारित मंच के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों और अवसंरचना नेटवर्क को एक साथ जोड़ा है। आज पीएम गतिशक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 1800 से अधिक डेटा लेयर एकीकृत हैं, जिनमें 58 केंद्रीय मंत्रालयों और

0: अंकन किया जा चुका है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि जीएसटी परिषद जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे अमल में लाया जा रहा है।
2: 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी देश में कर व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके तहत केंद्र और राज्यों के कई करों को एक ही कर व्यवस्था में शामिल किया गया। इससे एक देश एक कर की अवधारणा को बढ़ावा मिला। जीएसटी परिषद के प्रस्तावों का उद्देश्य जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक आसान, पारदर्शी और करदाताओं के अनुकूल बनाना है। पिछले साल जीएसटी में किए गए नए सुधारों के तहत जीएसटी परिषद ने 4 कर दरों 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की जगह अब केवल 2 मुख्य दरें 5 और 18 प्रतिशत कर दी गई है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी के माध्यम से सरकार ने करों की जटिल व्यवस्था को आसान कर दिया है।
3: जीएसटी के जरिए हमने टैक्सेस के एक कॉम्प्लेक्स वेब को नेशनल मार्केट में बदला है। बिजनेस से जुड़े सैकड़ों छोटी मोटी गलतियों को डिक्रिमिनलाइज किया गया है और भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है।
2: नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 58वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि परिषद ने जीएसटी के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान को हटाने की सिफारिश की है।
4: परिषद ने जीएसटी के अंतर्गत गिरफ्तारी के अधिकार को समाप्त करने की सिफारिश की है। इसके अलावा परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने का भी सुझाव दिया है। इसका मतलब है कि 5 करोड़ रुपए से कम की राशि के मामलों में अभियोजन नहीं चलाया जाएगा।
2: पिछले 9 वर्षों में कर प्रक्रिया को आसान बनाने और कर दरों में बदलाव से कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को भी मजबूती मिली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो NDA की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देश हित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ कभी भी देने का प्रयास नहीं किया।
1: UPI पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपए से अधिक के लेन देन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPA ने बताया है कि UPI और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए आज ये निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच सभी UPI लेन देन निःशुल्क रहेंगे। MDR शुल्क केवल 2,000 रुपए से अधिक के ग्राहक से व्यापारी के बीच लेन देन पर लागू होगा। व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी श्रेणी के अंतर्गत UPI QR कोड के माध्यम से प्रति माह 1,00,000 रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों को पहले की तरह लेन देन पर कोई MDR शुल्क नहीं देना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
6: घरेलू शेयर बाजार आज 1.5% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1,109 अंक चढ़कर 73,034 पर पहुंच गया। निफ्टी 359 अंक का उछाल दर्ज करता हुआ 22,722 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 50 पैसे की मजबूती के साथ 95.28 रुपए पर बंद हुआ।
1: सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और हवाई हमले की स्थिति के दौरान घरों में रहने की सलाह दी है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय समुदाय की सहायता के लिए 24 घंटे सक्रिय नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। भारतीय नागरिकों को एयरलाइंस के संपर्क में रहने और उड़ानों की ताजा जानकारी लेने की सलाह दी गई है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने प्रागवे में विश्व स्केटिंग गेम्स में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्षीय स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में

तीसरा स्थान हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इंकार से ये तथ्य नहीं बदलेगा। व्यक्ति से व्यापारी चुनिंदा लेन देन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की तेजी, सेंसेक्स 73,034 पर हुआ बंद। और आनंद कुमार बेलकुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Manthan.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए कृषि उत्पादकता को मजबूत करती प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
2: एसपी सिंह जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी धन्यवाद।
2: एसपी जी, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की गई किसानों की मदद के लिए, किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए और उनके रोजगार के अवसर बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े, इसलिए तमाम लक्ष्य निर्धारित किए गए। लेकिन अगर बेसिक तौर पर समझना चाहें तो किन किन मुख्य उद्देश्यों को लेकर के इस योजना की शुरुआत की गई थी?
3: प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का जो मूल उद्देश्य है या जो सोच के किया गया, उसमें ये मान के चला गया कि देश के उन जिलों में जहां पर कृषि उत्पादकता बहुत कम है और वहाँ पे फसलों की जो सघनता कह सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, खेती के लिए किसानों को कर्ज कम मिलता है, ऐसी जगहों पे जहाँ खेती बहुत बुरे हाल में थी कह सकते हैं, या बहुत न्यूनतम वहाँ की उत्पादकता थी और वहाँ के किसानों की बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, उनको कर्ज नहीं मिलता था, उनके खेती करने का तौर तरीका उनके पास वैज्ञानिक तरीके नहीं थे, इन सबको कैसे ठीक किया जाए, ऐसे 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यानी आकांक्षी जिलों को चिन्हित किया गया और जो 100 जिले चुने गए उनमें लगभग देश के सभी राज्यों के जिलों को शामिल किया गया है। इस योजना को संचालित करने के लिए 11 मंत्रालयों और विभागों की केंद्रीय की 36 योजनाएं, और जिसमें राज्य की भी योजनाएं शामिल है और निजी क्षेत्र की भागीदारी भी है, यानी जो निजी क्षेत्र, राज्य की योजनाएं और केंद्र की योजनाएं, मंत्रालयों, विभागों, सारी योजनाएं जो किसानों को संबल प्रदान करती हैं, जो उनकी खेती को अच्छी बना सकती हैं, उनको लेकर के एक ऐसी योजना तैयार की गई ताकि वहां की उत्पादकता बढ़े, वहां के किसानों की स्थिति में कैसे सुधार हो सकता है। सबसे बड़े जोर दिया गया कि फसलों की उत्पादकता यानी उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, यील्ड कैसे बढ़े, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े। दूसरी चीज दी गई कि फसलों में विविधीकरण, वहां पे कौन सी फसल बोई जाए इसका पता होना चाहिए वैज्ञानिक तरीके से। इसका पता लगाने के लिए सबसे जरूरी होता है कि वहां की मिट्टी की जांच की गई और वह स्टेट या वह डिस्ट्रिक्ट या वह क्षेत्र किस क्लाइमेटिक जोन में है, यानी वहां क्लाइमेट की ही फसल की खेती को किया जाए। तीसरा था कि क्या सिंचाई की सुविधा वहां है या नहीं है, तो दोनों स्थितियों का आकलन किया गया। उसके अलावा किया गया कि जो वहाँ उत्पादन होता है वहाँ पर भंडारण की, गोदामों की उपलब्धता है या नहीं है, क्योंकि देखा गया कि जो तमाम ऐसे डिस्ट्रिक्ट हमारे देश में हैं जहाँ उत्पादन तो हुआ लेकिन भंडारण की सुविधा नहीं है। आफ्टर जो हार्वेस्टिंग होता है, पोस्ट हार्वेस्ट को बोलते हैं, जो खेत से खलिहान तक आने में जो फसलों का नुकसान हो जाता है वो बहुत बड़े स्तर पर होता था, 30-35% तक नुकसान हो जाता था पूरी फसल का। ऐसे में एक फसलों का नुकसान न हो और उसके अलावा किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराना, क्योंकि माइक्रो फाइनेंसिंग या जो सरकारी फाइनेंसिंग बैंकों के थ्रू होती है उन तक पहुंच नहीं पाती है। इस तरह के डेटा पहले जुटाए गए और चिन्हित जब किया गया इन डिस्ट्रिक्ट को, इन जिलों के चिन्हित करने से पहले वहां के एक एक छोटे छोटे डेटा यानी जो आंकड़े वहां जुटाए गए कि यहां पर स्थितियां क्या है, कौन सी खेती होती है, कितने आय वर्ग के लोग हैं, कितने आमदनी होती है, कितना कुल उत्पादन होता है, सिंचाई का रकबा कितना है, कौन सी फसलों की खेती की जा सकती है और किसकी खेती हो रही है, तो इन सब चीजों का आकलन करने के बाद वैज्ञानिक तरीके से खेती को कैसे किया जाए, इसके लिए युवा

0: वैज्ञानिकों को, और जो बहुत कुशल टाइप के जो कृषि के अधिकारी थे उनकी ड्यूटी ऐसे जिलों में तैनात की गई, उनको लगाया गया ताकि वहां के किसानों को हर घड़ी वैज्ञानिक खेती के तौर तरीके मिले जिससे वो अच्छी खेती करें और उनका आमदनी बढ़े।
1: एसपी जी, 11 मंत्रालयों और विभागों के 36 केंद्रीय योजनाओं को राज्य की योजनाओं के साथ जोड़ा गया है, और ये हम भली भांति परिचित हैं कि प्रत्येक राज्य की स्थिति अलग है, तो ऐसे में प्रशासनिक ढांचे के साथ साथ इन बातों को ध्यान में रखना भी जरूरी होता है कि स्थिति के हिसाब से धन का आवंटन हो, जवाबदेही भी एक बड़ा मुद्दा होता है इसमें, और समय पर काम पूरा हो, इसके लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं?
0: मैंने पहले ही कहा था कि जो वहां पे गवर्नेंस के लिए जो अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, ऐसे कुशल वैज्ञानिकों की, ऐसे कुशल लोगों की, बैंकिंग में क्षेत्र में, इन सारे लोगों को एक ऐसी कमेटी बनाई गई, सतर्कता की कमेटी की बनाई गई, और इसकी पूरी निगरानी के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और स्टेट लेवल पर ऐसी निगरानी कमेटियां बनाई गई जो लगातार इन चीजों का आकलन करती रही कि जो ये काम हो रहा है उनको ये सब चीजें उपलब्ध हो रही है, जो सरकार सोच रही है योजनाओं में जो चीजें बनाई गई हैं उन तक पहुंच रही है कि नहीं। समीक्षा और निगरानी के लिए राज्य, जिला और राष्ट्रीय स्तर पर समितियां बनाई गई हैं और ये समितियां लगातार इन चीजों का आकलन करती हैं और समीक्षा करती हैं कि कहीं से कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, ये जो सुविधाएं जिन किसानों को, खेती को मिलना चाहिए वो मिल रही है या नहीं मिल रही है।
1: एसपी जी, अभी अगर हम इस चीज को देखें कि किसानों की बेसिक नीड्स क्या होती है, तो उन्हें इस दिशा में सहायता मिलती रहे लगातार, और बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी होते हैं जिनके पास जानकारी नहीं होती है, उनको किस तरह से मदद पहुंचाई जा रही है?
0: देश के ऐसे जिलों में जिनकी हम बात कर रहे हैं वो बेहद पिछड़े हुए और वहां पे जानकारी का अभाव नहीं था या नहीं है कह सकते हैं, ऐसे में जो ये योजना बनाई गई 6 साल की योजना है, 2025-26 में लागू की गई, ये 2030-31 तक चलेगी, 1,44,000 करोड़ यानी 1,50,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया जाएगा ऐसे 100 जिलों में। यह अपने आप में एक बहुत अनूठी टाइप की योजना है जिसमें करीब 2.25 करोड़ किसानों को, और इनमें उन किसानों को लिया जाएगा जो छोटे किसान है या सीमांत किसान, यानी मझोले या छोटे किसानों को ही इसका लाभ देने की बात है। हमारे किसान कितने कैपेबल हैं, कितने जानकार हैं, कितने दृढ़ प्रतिज्ञ हैं अपनी खेती को लेके, अपने तैयारी के लिए, ऐसे में प्रधानमंत्री ने सबसे पहली योजना शुरू की कि हर किसान के खेत की मिट्टी की जांच की जाए,
1: जी
0: यानी उस मिट्टी में कौन कौन से तत्व हैं, ताकि ऐसी खाद का या ऐसे चीजों का प्रयोग न किया जाए जिससे खेती खराब होती है, और कौन सी ऐसी खाद दी जाए जिसकी कमी है सिर्फ उतनी ही खाद देने से, यानी न्यूनतम खाद देने पर बेहतर बीज और मिट्टी हो, और इसके अलावा उनको सिंचाई की सुविधा दी जाए। हमें लगता है कि ये सुविधा सरकार ने, बेसिक सुविधा होती है किसानों को जो यहाँ के किसानों को तो दी ही जा रही है, इसके अलावा अतिरिक्त तौर पर पीएम धन धान कृषि योजना के तहत ऐसे किसानों को मतलब उन्नतशील बीज और जो उनके खेतों की या उनकी फसल की जरूरत के हिसाब से कौन सी खाद, फर्टिलाइजर यूज की जाए ये इसका उपयोग, और उनकी फसल की देख रेख के लिए कोई उसमें रोग तो नहीं लग रहा है इसका भी बाकायदा कृषि वैज्ञानिक जाके उसका निरीक्षण करते हैं और इस
1: जी
0: बात का पता लगाते हैं कि कौन सा पेस्टिसाइड यूज करके इनको रोका जा सकता है। दूसरा है कि सिंचाई की सुविधा कितनी है, और सिंचाई की अगर सुविधा बेहतर नहीं है तो आज की तारीख में भारत सरकार ने एक ऐसी योजना चला रखी है, प्रधानमंत्री का एक नारा था है अभी कह सकते हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी एक एक बूंद से ज्यादा उत्पादन लेना, यानी ड्रिप सिंचाई योजना, स्प्रिंकलर सिंचाई योजना, ऐसी योजनाओं को सरकार किसानों को सब्सिडी के आधार पर, समझिए 90% सरकार देती है और 10% किसान लगाता है, और ऐसे 100 जिलों में जो योजना में ये लाभ शायद 100% ही दिया जा रहा है सरकार की ओर से, हर किसान तक, हर खेत तक अच्छी सिंचाई की सुविधा मिल जाए ताकि उसकी खेती के लिए सिंचाई यानी पानी की कोई कमी न हो, अच्छी फसल पैदा करने के जितने भी होते हैं। तीसरी बात, आपने एक बात पूछी कि कृषि यंत्रों और जो उनको टेक्नोलॉजी खेती में यूज होती है कैसे उपलब्ध इनको कराया जाए, इसके लिए सरकार ने 2026 में एक योजना शुरू की है, कृषि यंत्रों की अनुदान देने की प्रक्रिया 2026 और 27 इसी साल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पहले चरण में शुरू कर दी गई है। इस प्रक्रिया के तहत किसान जो भी चिन्हित जिले हैं उन जिलों के जो किसान हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और उनको अनुदान देने की प्रक्रिया शुरुआत कर दी गई है।
1: एसपी जी, प्रधानमंत्री जी का ये एक मुख्य लक्ष्य रहा है, एक तरह से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में महिलाओं और युवा किसानों की भागीदारी बढ़े, तो महिला किसानों, कृषि उद्यमियों और खेती में जो नए नए प्रयोग करने वाले युवा हैं वो किस तरह से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, वित्तीय व्यवस्था उनके लिए क्या हो सकती है, और आधुनिक तकनीक जो उनको उपलब्ध कराई जा सकती है? इन तमाम बातों पर रोशनी डालिए, हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: महिला

जो किसान हैं और उद्यमी हैं, जो एग्रीकल्चर से जुड़े उद्यम में हाथ आजमाना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं, सरकार इसके लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराती है और देश के सारे जिलों में ये सुविधा उपलब्ध है। महिला उद्यमी और युवा उद्यमियों के लिए विशेष तौर पर लाभ दिया जा रहा है, ताकि गाँव से जो लोगों का पलायन शहरों की ओर हो रहा था क्योंकि रोजी रोजगार नहीं थे गाँव में, ऐसे में खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने और खेती के साथ जुड़े जो उद्यम होते हैं, एग्री बिजनेस जिसको कहते हैं या फूड प्रोसेसिंग जिसे कहते हैं, ऐसे छोटे छोटे इंडस्ट्री लगाने की सुविधा सरकार की ओर

0: आपका व्यवसाय बनाने और खेती के साथ जुड़े जो उद्यम होते हैं, एग्री बिजनेस जिसको कहते हैं या फूड प्रोसेसिंग जिसे कहते हैं, ऐसे छोटे छोटे इंडस्ट्री लगाने की सुविधा सरकार की ओर से दी जा रही है और ऐसे में उद्यमी आगे आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, ढेर सारे स्टार्टअप देश भर में खुल रहे हैं। किसानों की सुविधा देने के लिए जो डिजिटल सुविधाएं दी जाती हैं वह भी युवा उद्यमी अपने स्टार्टअप के माध्यम से किसानों तक पहुंचा रहे हैं और तमाम ऐसे स्टार्टअप हैं जो मुफ्त में सूचनाएं देते हैं किसानों को। सरकार की ओर से देखिए किसान को
1: जी
0: यहाँ तक सुविधा दी जाती है कि हर सप्ताह उसे यह सूचना दी जाती है कि मौसम में कैसा बदलाव आने वाला है, मौसम कैसा रहेगा, इसके अलावा उनकी फसल किस तरह की तैयार हो गई, अगर उनकी फसल में किसी भी तरह की कीड़े लगने या रोग लगने की कोई आशंका हो तो अपने फोन पर या जो आपके पड़ोस का आपके पंचायत में जो CSC खुला हुआ है सामुदायिक केंद्र, वहां से आप अपनी सूचनाएं दे सकते हैं, अपलोड करा सकते हैं या आपके पास मोबाइल फोन है उस पर ये डाल सकते हैं सूचना कि ये मुश्किलें पैदा हो रही हैं। ये सारी सुविधाओं का लाभ घर बैठे किसान को उसके खेत पर उपलब्ध हो जाता है और खास तौर से जो चिन्हित धन धान्य कृषि योजना के तहत जो डिस्ट्रिक्ट के किसान हैं उनके लिए विशेष सुविधा दी गई है कि उन्हें अगर किसी भी तरह का मौसम में परिवर्तन होता है तो उस ब्लॉक के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए CDO या DDO या जो बैठे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला कृषि अधिकारियों को ये पहले से निर्देश रहता है कि किसानों को जागरूक बनाएं रोज और उन्हें सूचना दें कि कब क्या सूचना देनी है और कब कैसे उससे अपने फसलों के बचाव कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए उनकी फसल का पैदावार अच्छी खासी हो जाती है तो अब वो अपनी फसल को लगाएं और जब तैयार खलिहान में आ जाती है या घर में आ जाती है तो उसे वो बाजार तक कैसे ले जाएं और किन बाजारों में ले जाएं और कहाँ रखें। तो भारत सरकार की एक योजना है बहुत बड़ी जिसको चला रहा है सहकारिता मंत्रालय। सोचिए इस देश में दुनिया की सबसे बड़ी योजना चली है प्रधानमंत्री अन्न भंडारण योजना, जो हर पैक्स में जो इतने भी न्याय पंचायतें, ग्राम पंचायतें या ग्राम सभाएं हैं उनके मार्फत पैक्स जो होता है, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं, उन्हें यह सुविधा दी गई है, सरकार की ओर से मदद दी जा रही है कि हर गांव में गोदाम बनाए जाएं। इससे भारत सरकार की बहुत बड़ी सब्सिडी की बचत होती है क्योंकि अनाज एक बार खरीदती है सरकार, फिर कहीं दूर ले जाके गोदाम में उसे रखा जाता है, फिर वहां से लाया जाता है, तो लाने ले जाने लादने उतारने तो लॉजिस्टिक और इसमें जितना खर्चा होता है वो सारा बचत होगी।
1: SP जी, एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने तमाम बातें बताई हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो FPOs हैं यानी कि किसान उत्पादक संगठन, उनकी भी बड़ी भूमिका इसमें रहती है कि वो भी काफी मदद पहुंचाते हैं किसान भाइयों को, तो इनके बारे में किस तरह से मदद इनसे ली जा सकती है, कैसे उनका लाभ उठाया जा सकता है और क्या उनका आज के समय में रोल है खासतौर पे इस योजना के संदर्भ में?
0: देखिए मैं इसी योजना के संदर्भ में एक बात बताऊंगा आपको कि FPO का इस योजना के साथ एक संगम हुआ था 15 राज्यों और 33 जिलों के करीब 72 से ज्यादा जिसमें FPO शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में उत्पादकता, बाजार तक पहुंच, आय बढ़ाने से जुड़े अनुभव साझा किए गए जिसमें प्राकृतिक तिलहन, दलहन, मधुमक्खी पालन, संरक्षित खेती, सूक्ष्म सिंचाई, संस्थागत कैसे लोगों को कर्ज मिले और डिजिटल खेती जैसे विषयों पर चर्चा की गई थी। और देखिए FPO है क्या, छोटे छोटे किसानों का एक संगठन बना गया, एक समूह है, एक संकुल है और इनकी जो समूह है मिलकर एक पूरा समूह बना लेते हैं और सारे छोटे छोटे खेतों को बड़े खेत बना दिए जाते हैं। उसके मायने यह होते हैं उसमें आप बड़ी टेक्नोलॉजी के बड़े जो यंत्र हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। हार्वेस्टर हुआ, जब हार्वेस्ट करने की बारी आती है तो बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं तो उन बड़ी मशीनों का संचालन छोटे खेतों में नहीं हो पाती। तो FPO के गठन के साथ ही किसानों को एक ताकत दी गई कि वो जब मान लीजिए बाजार से कोई इनपुट खरीदना हो, जैसे बीज लेना हो, फर्टिलाइजर लेना हो, पेस्टिसाइड लेना हो या अपना माल बाहर बेचना हो, ऐसी दशा में किसान व्यापारी से जो मोल भाव करता है वो बार्गेनिंग पावर किसान को बहुत कम होती है, उसके पास क्षमता नहीं होती अपने अनाज को रोकने की या किसी इनपुट की खरीदने में। लेकिन जब सामने वाली पार्टी को पता लगता है, इफको, क्रिपको या बड़ी कंपनी को पता लगता है कि इनको तो कम से कम 3 ट्रक फर्टिलाइजर की जरूरत है, 2 ट्रक इनको अब सीड की जरूरत है, ये इतने बल्क में खरीदेंगे, भारी मात्रा में खरीदेंगे, तो वो मोल तोल कर लेते हैं, तो जो चीज महंगी बिकने वाली होती है उसे सस्ती में खरीद हो जाती है। इससे ये होता है कि लागत कम आती है और बेचते समय मोल भाव करके भाव बढ़ाकर बेचते हैं, किसी कंपनी को बेचते हैं तो ऐसे में किसान को फायदा होता है। यानी FPO का फायदा हुआ तो किसान का फायदा हुआ क्योंकि FPO उसका पार्ट है, किसान उसका हिस्सा है। तो किसान का जब हिस्सा है FPO में, उस संगठन में, तो जब FPO को फायदा होगा तो किसान को फायदा होगा।
1: SP जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: देखिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।
2: अभी आप सुन रहे थे कृषि उत्पादकता को मजबूत करती प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना पर चर्चा। इसमें भाग

0: रहे थे वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
1: मंथन।

शास्त्रीय संगीत क्रम शुणुले शिल्पी निषाद खान को द्वारा परेशित सितार बादन ए क्रम शुणुले शिल्पी परेषण कर गट आलाप एवं तीन ताल रे राग चांदिनी कल्याण तबलार संगत करते सफत अहमद खान।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच एक सार्थक वार्ता हुई। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
1: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
0: नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक आज दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई। नई दिल्ली के बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों की कड़ी निंदा की। घोषणा में सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक और निरंतर प्रयासों के जरिए रोकने, उसका मुकाबला करने और उसे समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े, सुरक्षित, संकटों का सामना करने में सक्षम, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में डॉ मुर्गन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का उनका सफर एक सौभाग्य है। गृहमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि गुजरात में तीन नगर निकायों के चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की है। नई दिल्ली में संवाददाताओं में श्री शाह ने कहा कि दो नगर पालिकाओं और एक नगर निगम की कुल 104 सीट में से भाजपा ने 90 सीट जीती हैं। उन्होंने बताया कि उनके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांधीनगर नगर निगम की 44 सीट से भाजपा को 38 सीट मिली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस को 41 वर्षों में भी एक चुनाव जीत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को SIR से जोड़कर खारिज करने की जगह कांग्रेस का आत्ममंथन करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आज शाम कोलकाता के कालीघाट स्थित उनके आवास के बाहर कथित तौर पर चाकू से हमला करने की कोशिश की गई। राज्यसभा सांसद डोला सेन के अनुसार तनिष्ठा साहा नाम की एक महिला ने कथित तौर पर ममता बनर्जी की साड़ी खींची और चाकू से उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल महिला को हिरासत में लेकर कालीघाट पुलिस के हवाले कर दिया गया है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने पैराग्वे में विश्व स्केटिंग गेम में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्ष स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। मौसम विभाग ने कल तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में तेज़ बारिश की बिजली गिरने और तेज़ हवाएं चलने का अनुमान जताया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में ओलावृष्टि की भी संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।